नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज के सुहाने सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथियों, हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पाराशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पाराशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पाराशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पाराशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तक एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।

0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब अनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरीये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावारा हंगरे किसान भाई बोना ने आपने बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सब नु स्वागत करा हूं अपने असने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम की किसान भाई बोन आप सब ने खबर हसे कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने अमे हाजिर था एक नवा विषय ने हाथे। तो आज भी एक नव विषय जोड़ाए रो है। आज नो विषय है कि खेती करते दड़े अपने ने हेनी हेनी वातों ध्यान राखू है ने अपने हूँ परिश्रम कर हाँ। तो आना विषय में आज आप बातें तो करंगा पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमरेला गीत ने मौरे करा आपड़ी बात है। आप सब हम बरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बात है वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोन अनास की थाते पड़ो सूटो आशा करें कि आज जे भी बातें करी कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपने गमी होंगा। आपने हमारो आज ना कार्यक्रम केव लगे एना बारे में प्राय सुझाव आली सको अपने अना पता माते। आपणू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपणो पिनकोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको आपणे अणा फोन नंबर माते। आपणो फोन नंबर है 9460051234। एना साथे आप आपनी प्रतिक्रिया अमारे ईमेल आईडी माते भी मोकली शको। अमारो ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org radio@vagdhara.org। तो किसान भाई बोन फेरी मिलंगा अनस कार्यक्रम में एक नया विषय ने हाथे तारू दी। राम राम राम राम।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नु राज हूं है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिंदगी बर्बाद नी शुरुआत पानी तकी करो थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह
1: होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा
3: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू भारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
5: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
6: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉगर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पोषण माह चल रहा है और अभी के समय में हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें जो हैं वो इसी विषय से जुड़ी हुई करते हैं, और आज हम विश्व साक्षरता दिवस भी मना रहे हैं। तो आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पढ़ाई और पोषण के गहरे रिश्ते को लेकर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, उनकी याददाश्त तेज हो, वे मन लगाकर पढ़ें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की किताबों में मन लगाने की क्षमता का रिश्ता उनकी थाली से जुड़ा हुआ है? जी हाँ साथियों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और मस्तिष्क विकसित होता है। अगर बच्चों को सही समय पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, वो सुबह बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं या उनका भोजन केवल पेट भरने तक सीमित रहता है, तो इसका असर उनकी ऊर्जा, एकाग्रता और उनके सीखने की क्षमता पर पड़ता है। तो आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है विश्व साक्षरता विशेष कार्यक्रम में, हम बात करेंगे पढ़ाई और पोषण के गहरे रिश्ते पर। तो आइए जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा दिया था, अब सबसे पहले हम कार्यक्रम के माध्यम से एक रेडियो संवाद से जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई और पोषण का रिश्ता है। और ये जो संवाद है वो शायद घरों और गाँव में एक आम कहानी हो सकती है, लेकिन इससे हम क्या सीख ले सकते हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारा रेडियो नाटक सीमा, जो कि माँ है, पूजा जो उनकी बेटी है, जो स्कूल जाने वाली बच्ची है। तो आइए सुनते हैं।
1: पूजा बेटा, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी।
2: मम्मी, बस 5 मिनट और सोने दो ना।
1: अरे बेटा, 5 मिनट करते करते स्कूल का समय हो जाएगा, चलो जल्दी उठो।
2: अच्छा मम्मी, उठ रही हूँ।
1: लो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ।
2: मम्मी, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी।
1: क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी?
2: नहीं मम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस स्कूल के लिए देर हो रही है, वैसे भी मुझे सुबह भूख नहीं लगती।
1: ओ, लेकिन बेटा बिना कुछ खाए स्कूल जाना ठीक नहीं है।
2: अरे मम्मी, एक दिन नाश्ता नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, स्कूल से आकर खा लूंगी।
1: अरे बात एक दिन की नहीं है, तुम अक्सर बिना ठीक से नाश्ता किए स्कूल चली जाती हो।
2: लेकिन मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है, खाना खाने से पढ़ाई का क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है बेटा।
2: सच में?
1: हाँ, सोचो अगर तुम्हारे शरीर को समय पर ताकत ही नहीं मिलेगी तो तुम दिन भर कैसे सक्रिय रहोगी?
2: लेकिन मम्मी, मैं तो स्कूल में बैठकर पढ़ती हूँ, कोई भारी काम तो नहीं करती।
1: अरे पूजा, पढ़ाई केवल हाथ पैर का काम नहीं है, पढ़ाई के लिए दिमाग को भी सक्रिय करना पड़ता है। जब शरीर थका हुआ महसूस करता है या पेट खाली होता है तो ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
2: शायद इसीलिए मुझे क्लास में कभी कभी बहुत थकान लगती है।
1: और तुम कल क्या कह रही थी याद है?
2: क्या मम्मी?
1: तुम कह रही थी बेटा कि मैडम ने जो पढ़ाया था वह तुम्हें ठीक से याद ही नहीं रहा।
2: हाँ मम्मी, मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन कई बार ध्यान ही नहीं लगता, कभी नींद आने लगती है तो कभी थकान।
1: हाँ बेटा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ सही दिनचर्या और पौष्टिक भोजन भी जरूरी होता है।
2: अच्छा मम्मी, तो मुझे रोज सुबह क्या खाना चाहिए?
1: तुम्हें घर में जैसे कि जो पौष्टिक और उपलब्ध खाना हो वह तुम्हें खाना चाहिए, जैसे कि दूध, फल, दाल से बनी चीजें, अंकुरित अनाज, पोहा, दलिया, उपमा या फिर घर पर बना कोई अन्य पौष्टिक नाश्ता तुम कर सकती हो।
2: और अगर मैं सिर्फ चिप्स और बिस्किट खा लूं तो?
1: बेटा, केवल पेट भरना ही जरूरी नहीं है, शरीर को सही पोषण मिलना भी बहुत जरूरी होता है।
2: अच्छा, तो पढ़ाई के लिए मेरी किताबों के साथ थाली भी जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल जरूरी है, और तुमने सही कहा।
2: मम्मी, हमारे स्कूल में मिड डे मील मिलता है, वो भी हमारे पोषण के लिए जरूरी होता है ना?
1: हाँ बेटा, स्कूल में मिलने वाला पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसे भी ध्यान से और पूरा खाना हमें चाहिए।
2: लेकिन मम्मी, मेरी कुछ सहेलियां तो उसे खाना छोड़ देती हैं। वे कहती हैं कि घर जाकर खा लेंगे।
1: अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करना भी जरूरी होता है बेटा।
2: मम्मी, क्या इसीलिए आप हमेशा कहती हैं कि पढ़ाई के साथ खेलने, खाने और सोने का समय भी तय होना चाहिए?
1: हाँ बेटा, अगर बच्चा समय पर खाना खाए, पर्याप्त आराम करे, खेले और नियमित पढ़ाई करे तो उसकी दिनचर्या संतुलित रहती है।
2: अच्छा मम्मी, कभी कभी मैं मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खाती हूँ और पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती।
1: हाँ बेटा, यही तो समस्या है, खाने के समय भोजन पर ध्यान देना हमें चाहिए और पढ़ाई के समय पढ़ाई पर।
2: अब मैं समझ गई। अच्छा, पढ़ने के लिए केवल ज्यादा देर तक किताबें लेकर बैठना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन भी उतने ही जरूरी होते हैं।
2: मम्मी, आज मैं सुबह बिना नाश्ता किए स्कूल नहीं जाऊंगी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है,
2: और स्कूल में मिलने वाला पौष्टिक भोजन ही वो भी मैं ठीक से खाऊंगी।
1: हाँ शाबाश बेटा।
2: लेकिन मम्मी एक बात बताऊं?
1: हाँ बेटा बताओ।
2: आज मुझे समझ में आ गया कि अगर शरीर को सही पोषण मिलेगा तो पढ़ाई में मन लगाने की ताकत भी मिलेगी।
1: बिल्कुल बेटा, और यही बात हर बच्चे और हर माता पिता को समझनी चाहिए।
2: तो चलो मम्मी, आज नाश्ता करते हैं, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
1: हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी करते हैं।
3: पौष्टिक खाना अपनाएं, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें। तन होगा जब मजबूत हमारा, उज्जवल होगा भविष्य हमारा।
0: तो साथियों, आपने सुना हमारी सीमा और पूजा की छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है कि बच्चों की पढ़ाई और उनके पोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। कई बार हम बच्चों के कम नंबर आने पर केवल उनकी पढ़ाई को जिम्मेदार मान लेते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, उसकी याददाश्त कमजोर है। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि बच्चा समय पर और संतुलित भोजन कर रहा है या नहीं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विषय विशेषज्ञ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को।
4: सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
5: सभी को नमस्ते, मैं विजय प्रकाश जैन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेंदिया डिंडोर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ।
4: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और हम देख रहे हैं कि पोषण माह चल रहा है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पोषण और बच्चे की पढ़ाई, स्वस्थ शरीर तेज दिमाग के लिए कैसे जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि क्या बच्चों के पोषण का सीधा असर उनकी पढ़ाई, सीखने की क्षमता और स्कूल के प्रदर्शन पर पड़ता है?
5: जी बिल्कुल, बच्चों की जो पोषण है उसका बच्चों की सीखने की क्षमता पर सीधा सीधा असर पड़ता है। बहुत सारे शोध ये कहते हैं कि जो बच्चे की सीखने की उम्र होती है वो 9 वर्ष तक बहुत ज्यादा होती है। बच्चा 9 वर्ष तक की उम्र में एक बहुत ज्यादा सीखता है।
4: बिल्कुल।
5: और इस उम्र में ही ध्यान देने और सीखने में जो ऊर्जा के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें संतुलित भोजन की एक बहुत जरूरी मात्रा होना जरूरी है।
4: बिल्कुल।
5: तो कक्षा की गतिविधियों में यदि बच्चा बेहतर भाग ले पाए, इसके लिए बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से भूख और कमजोरी की अवस्था वाले जो बच्चे हैं उनका ध्यान सीखने से हट जाता है और शारीरिक जरूरतों की ओर चला जाता है।
4: बिल्कुल।
5: तो सीधे सीधी बात है कि यदि बच्चा भूखा है, उसमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, विटामिन्स की कमी है, तो उसकी सीखने की क्षमताओं पर असर पड़ेगा निश्चित।
4: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अगर बच्चों को लंबे समय तक पर्याप्त और संतुलित पोषण न मिले तो क्या उनकी याददाश्त और समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है?
5: देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। यदि लंबे समय तक उनको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा या बच्चे भूखे रहेंगे लंबे समय तक, तो उनकी सीखने की क्षमताएं प्रभावित होंगी। स्पेशली जो किशोरावस्था होती है, बचपन से लेकर किशोरावस्था की अवस्था, वहां पर जो बच्चों की संतुलित भोजन है उनकी कमजोर याददाश्त का कारण बन जाती है।
4: बिल्कुल।
5: लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल यही चीज नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना है, खेल है, सामाजिक सुरक्षा की उनकी जो भावना है, जो उनका सामाजिक परिवेश का ताना बाना है, वो भी उसके सीखने में उतने ही जरूरी है जितना पोषण भी जरूरी।
4: बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि लंबे समय तक पर्याप्त संतुलित भोजन अगर बच्चों को न मिले तो उसकी जो विकास की क्षमता है उस पर उसका असर अवश्य पड़ता है। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, नाश्ते में किन चीजों को उन्हें शामिल करना चाहिए?
5: बच्चों की दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो संतुलित नाश्ता लेकर के बच्चे विद्यालय से जाएं। वैसे राजस्थान के विद्यालयों में मिड डे मील मिलता है, लेकिन वो मिड डे मील स्कूल आने के 2 से 3 घंटे बाद मिलता है।
4: बिल्कुल।
5: अभी पिछले कुछ समय से दूध भी बच्चों को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि संतुलित नाश्ता बच्चों को दिया जाए, जैसे दही है, उपमा है, मूंगफली है, भुने चना है, कुछ फल है, दलिया है, दूध है, इस तरह की चीजें दी जाएं, तो बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ता है। नाश्ता होना चाहिए वो विविधतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन उसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। मेरा कहना यह है कि वर्तमान में जो पैकेट बंद नाश्ता जो चल रहा है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है।
4: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं, खाली पेट स्कूल चले जाते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है?
5: बिल्कुल होती है। हम हमारे स्कूलों में देखते हैं कि जो बच्चे भूखे आते हैं, जिनके घर पे किन्हीं कारण सुबह नाश्ता या खाना नहीं बन पाता है, वो लंच का इंतजार करते रहते हैं, मिड डे मील के भोजन का इंतजार करते हैं, और वो बार बार हमसे पूछते हैं सर लंच कब होगी, सर खाना कब मिलेगा। तो उनकी एकाग्रता निश्चित रूप से प्रभावित होती है, उनकी पढ़ाई निश्चित रूप से प्रभावित होती है, और पढ़ाई जो सीखने की क्षमता है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है उनकी।
4: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि स्कूलों में मिलने वाला जो मिड डे मील होता है वो बच्चों के पोषण और उनकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका क्या महत्व है?
5: देखिए, एक तो सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जो विद्यालय में भोजन मिलता है उससे उनकी जो सीखने की क्षमता है वो ठीक रहती है, क्योंकि बच्चे लंबे समय तक भूखे नहीं रहते हैं। दूसरा, बच्चों की नियमितता बढ़ती है।
4: बिल्कुल,
5: बच्चे रोजाना विद्यालय आने लगते हैं, बच्चों का ठहराव बढ़ता है। जिस दिन विद्यालय में यदि भोजन नहीं मिलता है तो बच्चे लंच के बाद भाग जाते हैं स्कूल से।
4: बिल्कुल,
5: तो इनका एक ठहराव बढ़ता है। एक साथ में खाने की संस्कृति विकसित होती है। विद्यालय केवल मिड डे मील में भोजन ही उपलब्ध नहीं करवाता है, हाथ धो के किस तरह खाना है, कैसे अपनी थाली खुद साफ करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे पंक्तिबद्ध होकर के खाना है, खाना खाने के बाद कैसे हाथों को धोना है, तो वो सारी चीजें जो भोजन है, स्वच्छता है, और इसमें जो स्वास्थ्य के प्रति, वो सारी समझ विकसित होती है, वो मिड डे मील के माध्यम से होती है।
4: बिल्कुल सर, अब यही मेरा आपसे अगला सवाल है कि पढ़ाई के बीच अगर बच्चों को भूख लगे तो कौन से पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं?
5: लंच के अलावा यदि भूख लगती है तो मूंगफली दी जा सकती है बच्चों को, दूध अभी हम लोगों ने शुरू किया है वो दिया जा सकता है, कुछ चने वगैरह इस तरह की चीज दी जा सकती है। कुछ साल पहले सरकार ने चिक्की शुरू की थी, चिक्की एक बहुत अच्छा कारण थी, जब हमें बच्चों को भूख लगती थी तो हम बच्चों को बीच में चिक्की, छोटे बच्चों को स्पेशली पहली दूसरी तीसरी वालों को हम चिक्की खिला दिया करते थे, तो उससे बच्चे क्लास में निरंतर रूप से बैठते थे और उनका जो पढ़ाई वाला हिस्सा है वो प्रभावित होता नहीं था।
4: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अगर पढ़ाई के बीच में भी अगर बच्चों को भूख लगे तो कौन से ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं? यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई में मन लगाने के लिए भोजन के अलावा किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है?
5: भोजन के अलावा एक तो पर्याप्त नींद बच्चों को मिलनी चाहिए। अभी मोबाइल के टाइम में हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों का, और इससे बच्चे उतना नहीं सो पा रहे हैं जितना एक पर्याप्त नींद बच्चों को होनी चाहिए। पौष्टिक भोजन और नियमित मिलना चाहिए। पानी बच्चे पर्याप्त मात्रा में पिए, वो स्वच्छ पानी होना चाहिए। एक खेल बच्चे पर्याप्त जो उनकी शारीरिक गतिविधि है वो हो। व्यायाम प्रतिदिन बच्चे मिले। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे विराम होने चाहिए बच्चों के।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि एक चीज मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि जैसे ही बच्चे का हिंदी का और गणित के घंटा चेंज होता है और बच्चे जैसे हिंदी से गणित के बीच में आते हैं तो उनकी हिंदी से गणित में जो टर्नओवर होता है वो बहुत प्रभावित करता है उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो वहाँ छोटी छोटी कुछ विराम चिन्ह होने चाहिए। कला के और खेल के पीरियड्स बच्चों के होने चाहिए। पढ़ने की संस्कृति के लिए स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें बच्चों के साथ होनी चाहिए। दंड जो है स्कूल में हम बंद कर चुके हैं, बच्चों को अपमानित करने वाला जो चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए। और एक स्वच्छ वातावरण, शांत वातावरण, सुरक्षित, स्पेशली जो हमारी छोटी बच्चियां हैं उनको सुरक्षित वातावरण विद्यालय में भी मिलना चाहिए और घरों पर भी मिलना चाहिए।
4: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पोषण के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, जिनका विशेष तौर पर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि माता पिता को बच्चों के भोजन, नाश्ते और रोजमर्रा की आदतों में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है?
5: तो वो ये ध्यान रखें कि पौष्टिक भोजन में क्या खिलाएं बच्चों, क्या विविधतापूर्ण नाश्ता उनको दिया जाए जिससे बच्चे बदल, क्योंकि बच्चे एक जैसी चीज खाते खाते बोर हो जाते हैं। हम हमारे घरों में भी देखते हैं, दिक्कतें आती हैं। उनको क्या खाना अच्छा लगता है उस चीजों को देखें। उन्हें कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है, जो हम गुड टच बैड टच की या सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श की बात करते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। और उनको नींद, भोजन, ये सारी चीजें पर्याप्त मिले। मेरा ये कहना है कि सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है, सुरक्षित सामाजिक परिवेश बहुत जरूरी है, और स्वच्छ भोजन बहुत जरूरी है। ढका हुआ खाना, हाथ धोकर के खाना, हाथ धोकर के पानी पीना, ये सारी चीजें बच्चे विद्यालय में भी सीखते हैं और घर पे भी माता पिता इन चीजों की निरंतरता बनाए रखें, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए।
4: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि आपसे कि बच्चों के बेहतर पोषण के लिए स्कूल और परिवार मिलकर क्या भूमिका निभाएं और किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए बहुत जरूरी है।
5: देखिए मैडम, परिवार जो है वो बच्चों को स्वस्थ भोजन, नियमित दिनचर्या, भावनात्मक सुरक्षा, ये सारी चीजें सीखने के अवसर देता है। विद्यालय में सुरक्षित वातावरण मिलता है और समावेशी वातावरण मिलता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, विद्यालयी भोजन, खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सारी जो आदतें हैं वो सीखने को समर्थन देती हैं। तो यदि ये सारी चीजें होंगी तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकेगा, एकाग्रता के साथ सीख सकेगा और वो सीखना बहुआयामी होगा, विविधतापूर्ण सीखना होगा। तो शिक्षक यदि देखता है कि बच्चा थका हुआ है, भूखा है, आज किसी कारण से उसको कोई दिक्कत है, तो उसको कमजोर विद्यार्थी का दर्जा दे देना उचित नहीं है। उन कारणों की खोज शिक्षक को करनी चाहिए कि बच्चा आज क्यों थका है, क्यों परेशान है, क्यों उदास है,
0: जी जी।
5: और उन कारणों की खोज करते हुए उन परिस्थितियों को समझे और उसके बाद में वो उस बच्चे को अन्य बच्चों के साथ जोड़े, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए हो सके।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो इस तरीके से स्कूल और परिवार मिलकर बच्चों के बेहतर पोषण और उनकी सुरक्षा को लेकर कार्य कर सकते हैं। यहीं अंत में आप हमारे जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं उनके पोषण और पढ़ाई से संबंधित क्या महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोता साथियों को देना चाहेंगे?
5: हमारे पुराने लोग कह के गए हैं कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, दे दे अपने कंठ की माला। तो बच्चे का पेट, मन और मस्तिष्क तीनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यदि तीनों स्वस्थ हैं, पेट स्वस्थ है, उसका उसमें पर्याप्त भोजन है, मन उसका अच्छा है, मस्तिष्क उसका अच्छा है, तो बच्चा बेहतर तरीके से इसकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले, पर्याप्त नींद मिले, पर्याप्त रूप से खेलने के अवसर मिले, और क्या वो विद्यालय में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसके साथ महत्वपूर्ण बात है, क्या वो सम्मानित महसूस कर रहा है।
0: जी जी।
5: यदि वो सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है तो मेरा तो यही सीधा सीधा कहना है कि ये सारी चीजें सीखने का आधार है। सुरक्षित मन सीखने को साहस देता है, अच्छा विद्यालय सीखने के अवसर देता है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें सारे बच्चे सुरक्षित वातावरण में सीख सकें, पर्याप्त भोजन उनको मिले, पर्याप्त नींद मिले, ये सारी चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
5: धन्यवाद।
0: तो साथियों, आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है कि बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों, स्कूल और होमवर्क तक सीमित नहीं है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और सही पोषण का भी उनकी सेहत की प्रक्रिया से गहरा संबंध है। एक बच्चा जब सुबह समय पर पौष्टिक नाश्ता करता है, संतुलित भोजन लेता है और पर्याप्त पानी पीता है और स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है तो उसका शरीर और मन दोनों बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए माता पिता से हमारी छोटी सी अपील है कि बच्चों से केवल यह न पूछें कि आज कितनी पढ़ाई की, कभी यह भी पूछें कि आज तुमने क्या खाया, क्योंकि पौष्टिक भोजन से मिलेगा बल, पढ़ाई में लगेगा बच्चों का मन, स्वस्थ तन और सक्रिय दिमाग, यही है उज्जवल भविष्य की पहचान। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से

कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई ने बोनो घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है माँ ने दुआ पिता ने उम्मीद ने सोरनी मुस्कान होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है साक्षरता से आत्मनिर्भरता तक, यानी कि युवा बदलेंगे तो समाज बदलेगा।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साक्षरता यानी केवल अक्षरों को पहचान लेना या अपना नाम लिख लेना नहीं। साक्षरता का वास्तविक अर्थ तो ये है कशिश कि जानकारी को समझना, सही निर्णय लेना, अपने अधिकारों और कर्तव्य को जानना और अपने ज्ञान का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना।
0: बिल्कुल।
1: और जब यही साक्षरता युवाओं के हाथों में आती है तो वो केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार और समाज में बदलाव की शुरुआत करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।
2: टूटा टूटा एक पर...

0: ਹੱਸਦੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि साक्षरता से आत्मनिर्भरता का सफर कैसा है
2: जी, हाँ।
1: और अगर युवा बदलेंगे तो समाज कैसे बदलेगा। जैसा कि जागृति जी, आज का जो ये हमारा विषय है वो केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, हमारे सपनों और हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।
2: बिल्कुल।
1: हम जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों, साक्षरता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा युवा जो पढ़ना लिखना जानता है लेकिन उसके पास सही जानकारी नहीं है, वह किसी कागज पर लिखी जरूरी बात को समझ नहीं पाता, जागृति जी, किसी योजना की जानकारी नहीं ले पाता या किसी अवसर तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करता है।
2: बिल्कुल।
1: वहीं इसके विपरीत श्रोता साथियों, एक जागरूक और शिक्षित युवा है जो अपने आसपास की जानकारी को समझ पाता है, वो नौकरी और कौशल के अवसर तलाश सकता है, डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग कर सकता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
2: बिल्कुल।
1: साथ ही अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय भी ले सकता है।
2: जी हाँ
1: दोस्तों, यही कारण है कि साक्षरता आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ियों में से एक है, क्योंकि साक्षरता हमें केवल किताबों से ज्ञान नहीं देती बल्कि हमें ये सिखाती है कि ज्ञान को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है।
2: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। और जैसा कि हम साक्षरता को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि साथियों, हमारे भारत जैसे देश में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
2: युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि आज के समाज के सक्रिय भागीदार है। हम देखते हैं कशिश कि एक युवा अगर शिक्षित और जागरूक है तो वो अपने परिवार में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
1: जी हाँ।
2: वो अपने माता पिता को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान या सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी समझा सकता है। वो छोटे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकता है। वो गांव और मोहल्ले के अन्य युवाओं को शिक्षा और कौशल के महत्व के बारे में बता सकता है।
1: बिल्कुल।
2: इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि साक्षर युवा केवल अपने लिए आगे नहीं बढ़ता बल्कि अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने का रास्ता बनाता है।
1: जी हाँ, साथ ही हम देखते हैं कि अक्सर युवा साथी जो है वो साक्षरता का मतलब केवल किताबी ज्ञान समझ लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन आज के समय में साक्षरता का दायरा जो है वो काफी बड़ा हो गया है। आज श्रोता साथियों, जरूरत है डिजिटल साक्षरता की, वित्तीय साक्षरता की, कानूनी और नागरिक जागरूकता की, स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी की, रोजगार और कौशल संबंधित जानकारी की और मीडिया और इंटरनेट की समझ होने की।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है जागृति जी, लेकिन हर जानकारी सही हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हमारे युवाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सही और गलत जानकारी में अंतर कैसे किया जाए। दोस्तों, यही आधुनिक साक्षरता है, जैसे कि जानकारी प्राप्त करना, उसे समझना और सोच समझकर उसका उपयोग करना।
2: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जब ज्ञान हमारे पास आता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास हमें अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में ले जाता है।
1: बिल्कुल।
2: एक साक्षर युवा अपने लिए उपलब्ध अवसरों को पहचान सकता है, वो अपनी रुचि के अनुसार कोई कौशल सीख सकता है, रोजगार के नए रास्ते तलाश सकता है या स्वरोजगार की दिशा में कदम भी बढ़ा सकता है।
1: जी जी।
2: आज हम देखते हैं कि युवाओं के लिए पारंपरिक नौकरियों के अलावा अनेक क्षेत्रों में अवसर है, जैसे कि डिजिटल सेवाएं हो गई, कृषि आधारित उद्यम हो गए, हस्तशिल्प हो गया, पर्यटन हो गए, तकनीकी कार्य हो गए, ऑनलाइन सेवाएं हो गई और कई प्रकार के कौशल आधारित रोजगार हो गए।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन श्रोताओं, अवसर तभी उपयोगी बनता है जब हमें उसके बारे में जानकारी हो और उसे हासिल करने का कौशल भी हो। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा हमें रास्ता दिखाती है, कौशल हमें चलना सिखाता है और आत्मविश्वास हमें मंजिल तक पहुंचाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं साक्षरता से लेकर आत्मनिर्भरता के सफर को लेकर, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं हम।
2: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे साक्षरता के महत्व को लेकर। तो यही हमारे श्रोता साथियों को साक्षरता के बारे में अगर कशिश हम बताएं तो हम देखते हैं कि आज के समय में सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रहा है। जीवन खुद एक विद्यालय है। हम अपने आसपास के लोगों से सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सीख सकते हैं, अनुभवी लोगों से सीख सकते हैं और तकनीक की मदद से भी नई चीजें सीख सकते हैं। जरूरत है श्रोताओं केवल सीखने की इच्छा की। अगर किसी युवा को कोई काम नहीं आता तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं आता इसीलिए मैं नहीं कर सकता, बल्कि उसे ये कहना चाहिए अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और यही सोच आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। युवा साथियों, हम देखते हैं कि आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मोबाइल का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए भी हम कर सकते हैं। जागृति जी, युवा ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री देख सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने कौशल को विकसित वे कर सकते हैं और जरूरी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना भी वे सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों में सावधानी भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर सच नहीं होती। किसी भी लिंक पर क्लिक करने, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले आपको सोच विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल दुनिया में जागरूकता भी जरूरी है, साथ ही साक्षरता भी इसका एक हिस्सा है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसों की सही समझ भी बहुत जरूरी है। युवाओं को ये समझना होगा कि कमाई के साथ साथ बचत, बजट और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार का भी बहुत महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: अपनी आय और खर्च का हिसाब रखना, बैंकिंग सेवाओं को समझना और ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी रखना, ये सभी बातें युवाओं को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल श्रोताओं कमाना नहीं है बल्कि कमाए हुए संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना भी है।
1: जी हाँ दोस्तों, कहना चाहेंगे कि समाज में बदलाव हमेशा बड़े मंचों से शुरू नहीं होता।
0: बिल्कुल।
1: कई बार जागृति जी, बड़ा बदलाव घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू होता है। जब घर का एक युवा जागरूक होता है तो वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी जागरूक कर सकता है।
0: जी हाँ।
1: वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, परिवार के सदस्यों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं की जानकारी दे सकता है, साथ ही बुजुर्गों के डिजिटल कामों में मदद भी कर सकता है, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा का महत्व समझा सकता है। जागृति जी, इस तरह कहा जा सकता है कि युवा के

0: जागरूकता धीरे धीरे पूरे परिवार और फिर समुदाय तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए साक्षरता और कौशल विकास के अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: आज कृषि केवल पारंपरिक तरीके से खेती करने तक सीमित नहीं है। नई तकनीक, बेहतर कृषि पद्धतियाँ, प्रसंस्करण, स्थायी उत्पादों का मूल्यवर्धन और बाजार की समझ युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर युवा जानकारी और तकनीक से जुड़ता है तो वो अपने क्षेत्र में रहकर भी नए रास्ते खोज सकता है।
0: जी हाँ,
1: गांव का युवा अगर ज्ञान और कौशल से जुड़ता है तो गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे युवा साथियों को और भी बातें बताना चाहेंगे कशिश, कि समाज में बदलाव की शुरुआत व्यक्ति से होती है। अगर युवा अंधविश्वास के बजाय तर्क और जानकारी को महत्व देगा, भेदभाव के बजाय समानता की बात करेगा, हिंसा के बजाय संवाद को चुनेगा और समस्याओं की शिकायत करने के साथ साथ उनके समाधान में भी भागीदारी करेगा तो समाज निश्चित रूप से बदलेगा। एक जागरूक युवा अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है। श्रोताओं, वो मतदान के महत्व को समझता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, स्वच्छता को अपनाता है और सामाजिक जिम्मेदारियों में भाग लेता है। इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बनना चाहिए बल्कि समाज निर्माण में भागीदारी करने वाला नागरिक भी बनना होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी अगर बात करें तो कई बार साथियों हमारे सामने समस्या अवसर की कमी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा जागृति जी किसी विषय को समझते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह सवाल पूछने से नहीं डरते, नई चीजें सीखने से नहीं घबराते हैं, गलती होने पर भी उससे सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वह अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करते हैं।
1: जी हाँ,
0: और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आत्मनिर्भरता में बदल जाता है।
1: और हम कह सकते हैं कशिश कि हर दिन हमारे युवा साथी कुछ नया सीखेंगे, गलत जानकारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने परिवार और समुदाय को भी जागरूक करेंगे, किसी एक नए कौशल को सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं मानेंगे बल्कि बेहतर जीवन बनाने का माध्यम मानेंगे। तो श्रोताओं याद रखिए, साक्षरता हाथ में किताब देने से आगे की यात्रा है कि व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने का आत्मविश्वास देती है।
0: जी हाँ,
1: तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि साक्षरता किसी व्यक्ति के जीवन में रोशनी की तरह है। यह हमें पढ़ना लिखना सिखाने के साथ साथ समझने, सोचने, सवाल करने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। जब युवा शिक्षित होगा, जागरूक होगा और कौशल से जुड़ा होगा तो वो रोजगार के नए अवसर तलाश सकेगा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही और जब हजार लाखों युवा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे कशिश, तो उसका प्रभाव परिवार, गांव, शहरों और पूरे समाज पर भी दिखाई देगा।
0: हाँ।
1: इसलिए आज का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है श्रोता साथियों कि युवा केवल बदलाव का इंतजार न करें, खुद बदलाव की शुरुआत बने, साक्षर बने, जागरूक बने, कौशल सीखे, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि एक साक्षर युवा अपने भविष्य को बदलता है और जागरूक युवा पूरे समाज का भविष्य बदल देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने सपनों को पहचानिए, सीखने की अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे जागृति जी, क्योंकि देख रहे हैं कि बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है बच्चों की शिक्षा पर निवेश, समाज का उज्जवल भविष्य विषय को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं अंजलि कि आज के बच्चे की शिक्षा पर किया गया निवेश कल पूरे समाज की प्रगति बनकर लौटता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कों या आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि उसकी नई पीढ़ी की सोच, ज्ञान और संस्कारों से तय होता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे केवल परिवार की खुशी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही संस्कार और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, वो समाज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च को केवल खर्च नहीं बल्कि भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश माना जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि आज के बच्चों पर शिक्षा पर किया गया निवेश कल पूरे समाज की प्रगति बनकर लूटता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। शिक्षा बच्चों को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि उसे सही राह और गलत में अंतर करना, प्रश्न पूछना, समस्याओं का समाधान खोजना, निर्णय लेना और जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: एक शिक्षित बच्चा आगे चलकर अपने परिवार को मजबूत करता है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है कि शिक्षा क्यों है सबसे बड़ा निवेश। श्रोता साथियों, जब हम किसी बच्चे की शिक्षा पर पैसा, समय और संसाधन लगाते हैं तो उसका लाभ केवल उस बच्चे तक सीमित नहीं रहता। शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान को परिवार और समाज के साथ साझा करता है, वह बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है।
0: जी हाँ।
1: एक शिक्षित पीढ़ी स्वस्थ, स्वच्छता, पर्यावरण, रोजगार और तकनीक और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इस प्रकार एक बच्चे की शिक्षा का प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: यही बात करें शिक्षा बच्चों के सपने को उड़ान कैसे देती है, तो श्रोता साथियों, हर बच्चे के मन में कुछ बनने और कुछ करने का सपना होता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी या उद्यमी। शिक्षा इन सपनों को दिशा देने का काम करती है। यदि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जागृति जी, उचित मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी क्षमता को पहचान सकता है।
0: जी हाँ।
1: शिक्षा उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ज्ञान के माध्यम से वह आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समाज को केवल पढ़े लिखे लोगों की नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। शिक्षा बच्चों को संविधान, अधिकारों, कर्तव्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ देती है।
1: बिल्कुल।
0: एक शिक्षित नागरिक अपने आसपास की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान में भागीदारी करता है। वो मतदान के महत्व, कानून के पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझता है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा में निवेश वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने में निवेश है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है, शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये अवसरों की कमी से जुड़ी होती है। जब किसी परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके पास बेहतर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देती है, वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है और आने वाली पीढ़ी को भी

0: बेहतर अवसर दे सकती है। इस प्रकार शिक्षा गरीबी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले जो चक्र होते हैं उन्हें तोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: आज हम देखते हैं कि समाज की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक बेटियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले। एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, अधिकारों, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार से जुड़े निर्णय के प्रति अधिक जागरूक हो सकती है।
1: हाँ।
0: वह अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बेटी स्कूल जाए, सीखे, आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे।
1: बिल्कुल।
0: कि बेटी की शिक्षा का सम्मान मजबूत परिवार और सशक्त समाज की पहचान है।
1: जी हाँ अंजलि, तो यही हम बात करते हैं शिक्षा के साथ संस्कार भी क्यों जरूरी है। तो साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास भी बहुत जरूरी है। बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, करुणा, मेहनत, पर्यावरण संरक्षण और दूसरों का सम्मान करने जैसे मूल्यों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ज्ञान के साथ संस्कार हो तो वही शिक्षा समाज के लिए वरदान बनती है।
0: जी जी।
1: हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो केवल सफल नहीं बल्कि अच्छी और जिम्मेदार इंसान भी बने।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा पर निवेश, समाज का उज्जवल भविष्य को लेकर, जिसमें हमने जाना कि शिक्षा क्यों है सबसे बड़ा निवेश। इसी के साथ हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे। अब बात आती है डिजिटल शिक्षा की बढ़ती भूमिका की। जी हाँ श्रोता साथियों, आज का समय डिजिटल तकनीक का है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षण सामग्री ने शिक्षा के तरीके को काफी बदल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को तकनीक का सकारात्मक और सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। डिजिटल माध्यमों से बच्चे जो हैं वो दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण वीडियो और डिजिटल पुस्तकालय उनके सीखने के अवसर बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी है कि बच्चों को तकनीक का संतुलित उपयोग सिखाया जाए, डिजिटल साधन ज्ञान का माध्यम बने, ध्यान भटकाने का कारण नहीं।
1: बिल्कुल अंजलि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी का अधिकार है, ये भी बहुत जरूरी है। साथियों, शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना होगा।
0: बिल्कुल,
1: गरीब परिवार, ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों और वंचित समुदायों के बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के जागरूक नागरिक मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है श्रोताओं, वो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानता है, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है और उसे सही दिशा दिखाता है। कई बार एक शिक्षक का छोटा सा प्रोत्साहन बच्चे के जीवन की दिशा बदल देता है अंजलि। इसीलिए शिक्षा में निवेश का अर्थ अच्छे विद्यालय और संसाधनों के साथ साथ शिक्षकों की क्षमता और सम्मान में निवेश भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं सारी चीजों के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी शामिल होती है। बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, घर भी बच्चों की पहली पाठशाला है।
1: बिल्कुल,
0: अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों पर केवल अच्छे अंक लाने का दबाव डालने के बजाय उनकी रुचि, क्षमता और भावनाओं को समझना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करना, उनकी पढ़ाई में रुचि लेना, उनकी जिज्ञासाओं का सम्मान करना और उन्हें पढ़ने के लिए सकारात्मक वातावरण देना अभिभावकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: हमें बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बच्चे की शिक्षा में पूरा समाज योगदान दे सकता है। समाज के सक्षम लोग जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: पुस्तकें, शिक्षण सामग्री, छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही जागृति जी, गांवों और समुदायों में पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और डिजिटल शिक्षा केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। इससे बच्चे को सीखने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना केवल उसकी उम्मीद करना नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव मजबूत करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ शिक्षित बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। वे साफ पानी, हाथ धोने, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझते हैं। अगर बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित की जाए तो उनका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए शिक्षा स्वस्थ समाज के निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता है। बच्चों को बचपन से ही पेड़ पौधे, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। शिक्षित और जागरूक बच्चे अपने परिवार को भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बना सकते हैं। एक छोटा बच्चा अगर अपने घर में पानी बचाने या कचरा अलग अलग रखने की आदत शुरू करता है तो पूरे परिवार में बदलाव ला सकता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। आज केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं अंजलि, संचार कौशल, तकनीकी ज्ञान, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और टीम वर्क जैसे कौशल भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें भविष्य की बदलती दुनिया के लिए तैयार करे। उन्हें केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि अवसर पहचानने और नए अवसर पैदा करने वाला बनाने की दिशा में शिक्षित किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत भी विकसित करें। वास्तविक शिक्षा वही है जिसमें बच्चा प्रश्न पूछने से डरे नहीं, उसकी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, कैसे, क्या होगा यदि, जैसे प्रश्न बच्चों की सोच को विकसित करते हैं। प्रश्न पूछने वाला बच्चा चीजों को गहराई से समझता है और नई संभावनाएं खोज सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, विद्यालय और परिवार दोनों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात रख सकें।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ शिक्षा में समान अवसर हो, यानी कि श्रोता साथियों, समाज में प्रत्येक बच्चे की परिस्थितियां समान नहीं होती है। किसी बच्चे को घर में पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिलता है तो किसी बच्चे को आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जागृति जी समाज की जिम्मेदारी है कि वह अवसरों की असमानता को कम किया जाए। किसी बच्चे की प्रतिभा केवल इसलिए पीछे नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। प्रतिभा किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होती, अवसर मिलने पर हर बच्चा आगे बढ़ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज हम बच्चों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा और वातावरण तैयार करेंगे कल का समाज उसी का परिणाम होगा। अगर हम बच्चों को ज्ञान कौशल संस्कार संवेदनशीलता और जिम्मेदारी देंगे तो भविष्य का समाज और अधिक मजबूत शांतिपूर्ण और प्रगतिशील होगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम बच्चों की शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे तो इसका प्रभाव केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर समाज और राष्ट्र के विकास पर भी पड़ेगा। इसलिए आज आवश्यकता है श्रोताओं कि हम शिक्षा को परिवार की प्राथमिकता, समाज की जिम्मेदारी और राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला माने।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों की शिक्षा पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन का निवेश समय के साथ कम और अधिक हो सकता है, लेकिन शिक्षा का निवेश व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्तित्व और क्षमता को लगातार बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: एक शिक्षित बच्चा अपने जीवन को बेहतर बनाता है, अपने परिवार को मजबूत करता है, समाज को जागरूक करता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। इसलिए हर परिवार को, समाज को यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
1: जी हाँ।
0: हमें बच्चों को केवल किताबें नहीं अवसर देने हैं, केवल अंक नहीं ज्ञान देना है, केवल नौकरी नहीं कौशल देना है, केवल सफलता नहीं संस्कार देना है। आज यदि हम बच्चों की शिक्षा में ईमानदारी से निवेश करेंगे तो आने वाला कल ज्ञान, समानता, आत्मनिर्भरता और विकास से भरा होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं भविष्य का निर्माण है। हर बच्चे के हाथ में किताब है तो देश के हाथ में विकास है। आज पढ़ेगा हर बच्चा तभी आगे बढ़ेगा भारत।
1: जी हाँ अंजलि, तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारी आज की इन बातचीत को हम विराम देते हैं क्योंकि समय का मान रखना होगा और समय होल्ड चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
0: बिल्कुल,
1: जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है स्वास्थ्य साक्षरता, बीमारी के बारे में सही जानकारी होना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हम पढ़ाई लिखाई को अक्सर केवल किताबों, स्कूलों और परीक्षाओं से जोड़कर देखते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी होना भी एक प्रकार की साक्षरता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि बीमारी के लक्षण क्या हैं, बीमारी से बचाव कैसे करना है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवा कैसे लेनी चाहिए और किस जानकारी पर विश्वास करना चाहिए,
0: जी हाँ,
1: तो हम कह सकते हैं मनीषा कि वह व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और स्वास्थ्य साक्षर है। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हर जगह उपलब्ध है।
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और लोगों की बातचीत के माध्यम से हमें रोजाना स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक बातें सुनने को मिलती है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार अधूरी या गलत जानकारी बीमारी को और गंभीर बना सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है, बीमारी के बारे में सही जानकारी क्यों जरूरी है और हम अपने परिवार और समाज को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य साक्षरता, बीमारी के बारे में सही जानकारी होना।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यही अगर बात करें कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि स्वास्थ्य साक्षरता का सरल अर्थ है स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी को समझना और जरूरत पड़ने पर उसका सही उपयोग करना।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो केवल इतना काफी नहीं है कि उसे बुखार है, उसे यह समझना चाहिए कि बुखार कई कारणों से हो सकता है। हर बुखार श्रोता साथियों एक ही दवा लेने से सही नहीं होता है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी हो रही है, सांस लेने में परेशानी है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है या शरीर में कोई दूसरा असामान्य बदलाव दिखाई दे रहा है, तो श्रोता साथियों उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य साक्षरता हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी जानकारी भरोसेमंद है और कौन सी अफवाहें हो सकती हैं और कब स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर से सलाह हमें लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है। तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य साक्षरता का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समझ सके, उसका सही उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए बीमारी की शुरुआती लक्षणों को पहचानना, यह जानना कि कब घरेलू देखभाल पर्याप्त है और कब डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को सही तरीके से लेना, टीकाकरण और नियमित जांच के महत्व को समझना, साफ सफाई और पोषण का ध्यान रखना, अफवाहों

0: और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी में अंतर समझना, बीमारी से बचाव के उपाय अपनाना, ये सभी स्वास्थ्य साक्षरता है। स्वास्थ्य साक्षर जो व्यक्ति होता है, मनीषा, केवल वह अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की, परिवार की सेहत के प्रति अधिक सजग रहता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बीमारी की जानकारी कहाँ से ले इसकी, तो श्रद्धा साथी हम देखते हैं कि आज हमारे पास जानकारी के लिए बहुत सारे साधन हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हर जगह से मिली जानकारी पर भरोसा करना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए श्रोता साथियों हम डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र और श्रोता साथियों अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी से सलाह भी हम ले सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट, अस्पताल और सामान्यता प्राप्त श्रोता साथियों स्वास्थ्य संस्थाओं में जाकर भी हम इसकी उपयोगी जानकारी हम ले सकते हैं। अगर श्रोता साथियों मोबाइल पर कोई स्वास्थ्य संबंधित वीडियो या संदेश आता है तो श्रोता साथियों उसे हमें तुरंत सर्च मानकर आगे भेजने के बजाय यह देखना चाहिए कि जानकारी किसने दी है और इसका भरोसेमंद आधार क्या है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बीमारी के बारे में सही जानकारी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय पर सही जानकारी, सही इलाज, सही सावधानी जीवन की रक्षा कर सकती है। कई बार लोग बीमारी की शुरुआती लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लगातार बुखार रहना, बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी, शरीर में असामान्य दर्द और कोई अन्य गंभीर लक्षण। यदि समय पर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह न ली जाए मनीषा, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग किसी भी बीमारी के बारे में सुनते ही डर जाते हैं और बिना सही जानकारी के गलत दवा या गलत इलाज शुरू कर देते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि हर बीमारी का इलाज पड़ोसी, रिश्तेदार या इंटरनेट की सलाह से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और बीमारी की स्थिति भी अलग हो सकती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, हम जान रहे हैं स्वास्थ्य साक्षरता और साथ ही बीमारी को लेकर सही जानकारी होना हमें क्यों जरूरी है। यही बात करें, अफवाहें और गलत जानकारी हो सकती है खतरनाक को लेकर। तो श्रोता साथियों, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। कोई वीडियो, कोई घरेलू नुस्खा या कोई संदेश कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें हर संदेश पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे संदेशों में कहा जाता है कि एक विशेष चीज खाने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर की दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई घरेलू नुस्खा गंभीर बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देगा, टीके नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ बीमारियां छूने या कह सकते हैं कि साथ बैठने से फैलती है, जबकि वास्तविकता अलग हो सकती है। ऐसी गलत जानकारियां लोगों में डर, भ्रम और भेदभाव पैदा कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, किसी भी स्वास्थ्य संबंधित संदेश को आगे भेजने से पहले सोचना जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह जानकारी किसी विश्वसनीय स्वास्थ्य स्रोत से मिली है, क्या डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी भी यही बात कहते हैं, क्या यह जानकारी वैज्ञानिक रूप से सही है। अगर जानकारी पर संदेह हो तो उसे आगे बढ़ाने के बजाय किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से पूछना बेहतर है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब श्रोता साथियों केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। लगातार तनाव, चिंता, डर, उदासी, नींद में परेशानी या रोजमर्रा के कामों में श्रोता साथियों मन न लगना जिसे समस्या है वो भी गंभीर हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लेना भी हमारे लिए मददगार हो सकता है।
0: जी जी।
1: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर श्रोता साथियों शर्म या झिझक हमें नहीं रखनी चाहिए। यही अगर अंजलि जी बात करें कि गाँव में स्वास्थ्य साक्षरता की क्यों जरूरत है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गांव में स्वास्थ्य साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई बार श्रोता साथियों लोग बीमारी को लेकर अफवाहें या सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। परंपराओं का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों हमें बीमारी का भी ध्यान रखना है और चिकित्सा से भी जरूरी जानकारी हमें लेते रहना है। साथ ही श्रोता साथियों आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल लोगों तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों अगर गांव का हर परिवार यह समझ जाए कि बीमारी के लक्षण कब गंभीर लेने ही और सही सलाह कहां से लेनी ही, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति ही वो जागरूक हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए हमें बीमारी के लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में कई बार बीमारी के संकेत दिखाई देते हैं। शरीर हमें पहले से सावधान करता है, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य साक्षरता हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे, लगातार बढ़ती जाए या गंभीर लगे तो देर नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कई बीमारियों में समय पर पहचान और इलाज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों बीमारी को छिपाने, शर्म करने या डरने के बजाय सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि बीमारी से बचाव इलाज से बेहतर। एक प्रसिद्ध बात है कि इलाज से बेहतर बचाव है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि भोजन से पहले और शौचालय के बाद हाथ साफ करना, साफ और सुरक्षित पानी का प्रयोग करना, घर और आसपास साफ सफाई रखना, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना, पर्याप्त नींद लेना, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाना, बीमारी के लक्षण होने पर उचित सलाह लेना। श्रोता साथियों स्वास्थ्य साक्षरता हमें केवल बीमारी के बाद इलाज करना नहीं सिखाती, बल्कि बीमारी से पहले ही बचाव करना सिखाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सही स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करना केवल सरकार और डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी की जिम्मेदारी है साथियों कि हम सही जानकारी रखें और गलत जानकारी को फैलाने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों अगर किसी परिवार में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे छुपाने के बजाय उचित सलाह हमें देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, उन्हें साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता और बीमारी के समय सही कदम उठाने की जानकारी हमें देनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, शिक्षा और सफलता तभी सार्थक है जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए केवल अस्पताल या दवाइयां ही पर्याप्त नहीं है। हमें सही जानकारी, सही आदत और सही निर्णय की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य साक्षरता हमें ये शक्ति देती है कि हम बीमारी को समझ सके, उसके प्रति सावधान रह सके और समय पर उचित सहायता ले सके। याद रखिए कि गलत जानकारी बीमारी को बढ़ा सकती है, लेकिन सही जानकारी बचाव और सही इलाज का रास्ता दिखा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए किसी भी स्वास्थ्य संबंधित बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें, जानकारी को समझें, जांचें, जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें।
1: जी हाँ।
0: हम सभी इस बात को मान सकते हैं कि हम स्वयं भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनेंगे और परिवार और बच्चे और पूरे समाज तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि सही जानकारी से बढ़ेगी समझ और समझ से होगा सही निर्णय, सही निर्णय से सुरक्षित होगा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समाज से बनेगा मजबूत राष्ट्र।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन करवा दे।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य पर बातें अब यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
2: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम बात करेंगे श्रोता साथियों आज एक ऐसे अधिकार की जो व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देने की ताकत रखता है। एक ऐसा अधिकार जो केवल अक्षरों को पहचानना नहीं सिखाता बल्कि इंसान को अपने फैसले खुद लेने, सही और गलत में अंतर समझने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आत्मविश्वास देता है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, आज हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि हर वर्ष 8 सितंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पढ़ना लिखना सीखना केवल स्कूल जाने वाले बच्चों तक सीमित नहीं है। साक्षर बच्चे, युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। साक्षरता का अर्थ केवल किताब पढ़ लेना या अपना नाम लिख लेना नहीं है। आज के समय में साक्षरता का अर्थ जानकारी को समझना, सही निर्णय लेना, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानना और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा व्यक्ति को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती है साथियों, बल्कि उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाती है। साथ ही श्रोता साथियों, जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाती है। हम देखते हैं अंजलि जी कि किसी भी राष्ट्र की प्रकृति उसके नागरिकों की शिक्षा और साक्षरता के स्तर से जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जिस देश में श्रोता साथियों नागरिक शिक्षित और जागरूक होते हैं वह देश सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ज्यादा विकसित होता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रोता साथियों, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर यानी कि श्रोता साथियों आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें कि साक्षरता आखिरकार क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के सामने कोई सरकारी कागज रखा गया है, उसमें उसके अधिकार, किसी योजना की जानकारी या जरूरी निर्देश लिखे हैं, लेकिन वह उसे पढ़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है। किसी महिला को बैंक से संबंधित कोई दस्तावेज दिया जाता है और वह उसे समझ नहीं पाती। किसी किसान को खाद या दवा के पैकेट पर लिखे निर्देश पढ़ने में परेशानी होती है। किसी मजदूर को मजदूरी से संबंधित कागज समझने में कठिनाई होती है। किसी अभिभावक को बच्चे के स्कूल से आया संदेश पढ़ने में दिक्कत होती है। ये छोटी लगने वाली परेशानियां व्यक्ति के जीवन में बड़ी बाधा बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: यही साक्षरता की भूमिका सामने आती है। साक्षरता व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति मनीषा पढ़ना लिखना सीखता है तो वह केवल शब्द नहीं पढ़ता बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है। साक्षरता केवल शिक्षा नहीं, जीवन जीने की समझ भी है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि अक्सर हम साक्षरता को सिर्फ पढ़ाई से जोड़कर देखते हैं, लेकिन साक्षरता का दायरा इससे कहीं बड़ा है।
0: बिल्कुल,
1: आज व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि बैंक में पैसा जमा और निकालते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले हमें उसे पढ़ना क्यों जरूरी है। मोबाइल पर आने वाले संदेश को कैसे समझें, ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें। साथ ही श्रोता साथियों, स्वास्थ्य से जुड़ी सही जो जानकारी है उसे हम कैसे पहचानें, दवा के पैकेट पर लिखी जानकारी को कैसे समझें, बच्चों की पढ़ाई में माता पिता किस तरह योगदान कर सकते हैं, सरकारी योजना की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, पंचायत और ग्राम सभा में अपनी बात कैसे रखें।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों आज की साक्षरता किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी है, और यही सारी चीजों की जानकारी हम सभी को होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य विश्व भर में साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक करना है, निरक्षरता को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। साथ ही श्रोता साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में समाज और सरकार के प्रति जागरूक करना है। साक्षरता श्रोता साथियों केवल अक्षरों को पहचानने का नाम नहीं है साथियों, बल्कि ये लोगों को जागरूक करने का नाम है। हम देखते हैं कि आधुनिक समय में साक्षरता का अर्थ श्रोता साथियों व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिसके माध्यम से वह पढ़ लिख सके, जानकारी को समझ सके, उसका उपयोग कर सके और आने वाले जीवन में अपने निर्णय खुद ले सके।
1: बिल्कुल मनीषा, महिलाओं के लिए साक्षरता का विशेष महत्व है। हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं परिवार और समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। वे खेती में काम करती है, पशुपालन करती है, घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है और कई बार परिवार की आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन यदि महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे कई जगहों पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। साक्षर महिला अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ सकती है, वह बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकती है, सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकती है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़ सकती है और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकती है। इसलिए एक महिला का साक्षर होना केवल उसके जीवन में बदलाव नहीं लाता बल्कि पूरे परिवार की सोच और भविष्य को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा भी जाता है कि जब एक व्यक्ति एक महिला पढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ किसानों के लिए भी साक्षरता जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में किसान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज खेती में तेजी से बदलाव आ रहा है, नई तकनीक, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, कृषि योजना, बीजों की जानकारी, मिट्टी की जाँच, जैविक खेती, सरकारी सहायता और कृषि उपकरणों से संबंधित जानकारी किसान तक पहुँचाना जरूरी है। यदि किसान जानकारी को पढ़ समझ सकता है तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसान जो है वो कई सारी चीजों को जब खरीदता है तो तब उसे उसमें लिखे निर्देश समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: बीज खरीदते समय उसकी जानकारी पढ़ना जरूरी है, किसी योजना के आवेदन में क्या दस्तावेज चाहिए यह समझना भी जरूरी है। इसलिए आज किसान की जो साक्षरता है वो खेती को मजबूत बना सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं श्रोता साथियों, अगर बात करें बच्चों के जीवन में साक्षरता का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि साक्षरता की मजबूत नींव बचपन से ही रखी जाती है। बच्चे को केवल स्कूल भेज देना पर्याप्त नहीं है, घर का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए मनीषा, जिसमें पढ़ने लिखने को प्रोत्साहन न मिले। माता पिता बच्चों से कह सकते हैं कि जो पढ़ो उसे समझो, और जो समझो उसे जीवन में अपनाओ। घर में बच्चों के लिए छोटी सी पुस्तक रखने की आदत, अखबार पढ़ने की आदत, कहानी सुनने की आदत और नई चीजों के बारे में सवाल पूछने की स्वतंत्रता उसके सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें चुप कराने के बजाय उनके सवालों को समझना चाहिए, क्योंकि सवाल करने वाला ही सीखने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, कई बार बड़े लोग यह सोच लेते हैं कि अब हमारी उम्र पढ़ने लिखने की नहीं है, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि

0: जीवन में उतारने की क्षमता भी रखता है। हम देखते हैं कि आज डिजिटल युग में श्रोता साथियों साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता, कानूनी साक्षरता और पर्यावरण साक्षरता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, डिजिटल साक्षर व्यक्ति मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करके वित्तीय सुरक्षा कर सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि वित्तीय रूप से श्रोता साथियों साक्षर व्यक्ति बैंकिंग, ऋण और निवेश जैसी मूलभूत जो बातें होती है उनकी समझ रखता है। इसी प्रकार श्रोता साथियों, आधुनिक साक्षर व्यक्ति को जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलती है।
1: हाँ मनीषा, आपने सही कहा, यही श्रोता साथियों को डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता के बारे में बताएं। तो आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मोबाइल से हम बैंकिंग कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ खतरे भी हैं, फर्जी लिंक, नकली फोन कॉल, गलत जानकारी और ऑनलाइन ठगी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। आज सिर्फ अक्षर ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें डिजिटल साक्षरता भी सीखनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर मोबाइल संदेश सही नहीं होता, हर इंटरनेट जानकारी सच नहीं होती, हर लिंक पर क्लिक करना सुरक्षित नहीं होता। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पैन, पासवर्ड और बैंक संबंधित गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में जागरूकता भी साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि व्यक्ति के विकास में भी साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्रोता साथियों, साक्षर व्यक्ति ज्ञान को समझने और उसका अपने जीवन में विकास करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान समझता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय को अधिक समझदारी से ले सकता है। वह सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, रोजगार और उनके जो अवसर होते हैं उनके अधिकारों को समझ पाता है और उनके जो कर्तव्य है उनको समझ पाता है और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि व्यक्ति है वो विश्वासी बनता है और अपने जीवन में अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करता है।
1: जी हाँ मनीषा, यदि गांव का हर व्यक्ति पढ़ने, समझने और सक्षम हो तो पूरे गांव की कार्य प्रणाली बेहतर हो सकती है। ग्राम सभा में लोग अपनी बेहतर तरीके से बात रख सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी समझ सकते हैं, पंचायत के कार्यों से संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। साक्षरता लोगों में भागीदारी की भावना को मजबूत करती है। जब लोग जागरूक होकर सवाल पूछते हैं, जानकारी मांगते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए साक्षरता केवल व्यक्ति का विकास नहीं करती बल्कि समाज को जागरूक और जिम्मेदार बनाने का माध्यम भी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गरीबी और निरक्षरता का आपसी में श्रोता साथियों गहरा संबंध है। शिक्षित शिक्षा व्यक्ति को बेहतर रोजगार देने में श्रोता साथियों अवसर देती है। साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति आपस में अपने आय को बढ़ाने में भी और अपने कौशल को सीखने में भी मदद करती है। साथ ही श्रोता साथियों, जब परिवार में शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता है तो हम देखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी श्रोता साथियों बेहतर अवसर है वो पैदा होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे घर के जो सदस्य होते हैं वो नए नए कौशलों को सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनके जीवन में भी नए अवसर हैं वो पैदा होते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें इस तरह आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर। यही अगर अंजलि जी बात करें कि महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि महिला साक्षरता किसी भी समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है साथियों, और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाती है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। इसीलिए श्रोता साथियों, महिला शिक्षा का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साक्षरता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि गीत से पहले भी हम जान पाए कि डिजिटल साक्षरता का होना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें कभी हिसाब किताब करने, कई सारी चीज़ों को करने में मदद करती है। साक्षर समाज बनाने की जिम्मेदारी केवल मनीषा स्कूल शिक्षक या सरकार की नहीं, हम सभी इसमें योगदान दे सकते हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसे पढ़ना लिखना हम सिखा सकते हैं, और हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है बल्कि उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चों को पढ़ाई में मदद करें, बुजुर्गों को मोबाइल और जरूरी जानकारी समझने में सहयोग दें, घर में पढ़ने की आदत विकसित करें। गांव में यदि साक्षरता से जुड़ा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें भाग लें। सबसे जरूरी बात श्रोता साथियों, ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। आपने जो सीखा है वह किसी दूसरे व्यक्ति को भी सिखाइए। अगर आप किसी को अपना नाम लिखना सिखाते हैं, किसी को कोई जरूरी कागज पढ़ना सिखाते हैं, या किसी को मोबाइल या सुरक्षित उपयोग समझाते हैं, तो आप भी साक्षरता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि साक्षरता व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास और नशे जैसी समस्याएं श्रोता साथियों, उनमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि शिक्षित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात को सुनता है, समझता है और आगे निर्णय लेने की कोशिश करता है और अपनी बात को सत्य तरीके से रखने की कोशिश करता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरूक नागरिकों की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। साक्षर व्यक्ति श्रोता साथियों, समाचार और सार्वजनिक मुद्दों को समझ सकता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग वो करता है। वह सरकार की नीतियों और जो लोगों की बातें होती है उन्हें समझकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। इससे श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र की मजबूती है वो बनी रहती है।
1: जी हाँ मनीषा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं कहता, ये दिन हमें अपने आसपास देखने या सोचने का अवसर देता है कि क्या हमारे परिवार, हमारे गांव और हमारे समाज में हर व्यक्ति को सीखने का अवसर मिल रहा है या नहीं। साक्षरता एक ऐसी रोशनी है जिसकी शुरुआत एक अक्षर से होती है, लेकिन उसका प्रकाश जीवन के अनेक क्षेत्रों तक पहुंचता है। एक व्यक्ति पढ़ना सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह जानकारी समझता है तो उसका निर्णय बेहतर होता है, वह अपने अधिकार पहचानता है तो उसकी भागीदारी बढ़ती है, वह अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अगली पीढ़ी मजबूत होती है, और जब पूरा समाज सीखने की ओर बढ़ता है तो विकास की गति तेज होती है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम खुद सीखेंगे, दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, अपने गांव को ज्ञान और जागरूकता से मजबूत बनाएंगे, क्योंकि साक्षरता सिर्फ अक्षरों की पहचान नहीं अपने जीवन की दिशा पहचान बनाने का भी नाम है। ज्ञान की रोशनी हर घर तक पहुँचाना है, अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाना है। खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, साक्षरता का सपना में सपना मिलकर सजाएं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार, विद्यालय, समाज, परिवार और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा को सुलभ बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा हमें देनी चाहिए। विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकें, शौचालय, बिजली और डिजिटल सुविधाएं वो हमें उपलब्ध करवानी है। साथ ही श्रोता साथियों, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पाठ्य सामग्री, अन्य जो आवश्यक सहायता हम उपलब्ध करा सकते हैं वो भी हमें करके आर्थिक सहायता उनकी करनी है। यहीं अगर अंजलि जी महिलाओं की शिक्षा की बात करी तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि महिलाओं की शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके लिए सुरक्षित विद्यालय वातावरण की आवश्यकता श्रोता साथियों उनके लिए बहुत जरूरी है। यही अंजलि जी बात करी वयस्क शिक्षा के विस्तार की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि वयस्कों के लिए लचीले समय में शिक्षा केंद्र चलाए जा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों स्थानीय समुदाय, समाज सेवी संगठन और शिक्षित युवा उनमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, साक्षरता को केवल पढ़ाई पूरी करने या परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं किया जा सकता। साक्षरता व्यक्ति के भीतर वह क्षमता विकसित करती है जिससे वह अपने आसपास घट रही घटनाओं को समझ सके, उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुन सके और अपने जीवन से जुड़े फैसलों में स्वयं भी भूमिका तय कर सके। हमारे गांवों और समुदाय में आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें सीखने की इच्छा तो है लेकिन किसी कारण से वे औपचारिक दिशा से दूर रह गए। किसी को बचपन में स्कूल जाने का अवसर मिला, किसी को परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी और किसी को परिस्थितियों ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन जीवन में सीखने के अवसर कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ किसी व्यक्ति की उम्र, आर्थिक स्थिति या पिछली शैक्षणिक स्थिति उसके सीखने के रास्ते में बाधा न बने। सीखने की शुरुआत छोटी हो सकती है, किसी शब्द को पहचानने से, अपना नाम लिखने से, किसी सूचना को समझने से या किसी नए कौशल को सीखने से, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का आधार बन सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रह गई है हमारे श्रोता साथियों से वो हम आगे भी जरूर करेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साक्षर समाज वही है जहां ज्ञान को ताकत समझा जाता है और सीखने की इच्छा का सम्मान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम केवल दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने आसपास से शुरुआत करें, अपने घर में देखें, अपने पड़ोस में देखें और अपने समुदाय में देखें कौन सीखना चाहता है, किसे थोड़ी मदद की जरूरत है, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहयोग चाहिए, किसी बुजुर्ग को मोबाइल चलाना सीखना है, किस महिला को किस दस्तावेज को समझने में सहायता चाहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि साक्षरता को हमें एक मंजिल नहीं बल्कि लगातार चलने वाली सीखने की यात्रा के रूप में देखना चाहिए। आज हम कोई एक चीज, नई चीज खरीदते हैं, कल दूसरी सीखते हैं और इसी तरह हमारा अनुभव बढ़ता जाता है। सीखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार और समुदाय के लिए भी नए अवसर पैदा करता है। इस अवसर पर हम ऐसा समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जहां किताबों का ज्ञान जीवन के अनुभवों से जुड़े, जहां बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिले, जहां बड़े लोग बिना झिझक के नई चीजें सीख सकें, जहां तकनीक का उपयोग समझदारी के साथ किया जाए। क्योंकि सच्ची साक्षरता तब दिखाई देती है जब ज्ञान हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आपको यही कहना चाहेंगे, एक अक्षर से शुरुआत होती है, एक विचार से बदलाव आता है, एक सीख से आत्मविश्वास बढ़ता है और जब सीखने की यह आदत पूरे समुदाय में फैलती है मनीषा, तभी एक जागरूक, सक्षम और मजबूत समाज का निर्माण होता है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि आप खुद भी इसके प्रति जागरूक रहिए और अन्य लोगों को भी जागरूक करिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज विश्व भर के सामने श्रोता साथियों गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक संघर्ष जैसी चुनौतियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए जागरूक और शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता होती है। साक्षरता श्रोता साथियों सतत विकास के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में आधारभूत भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति को संसाधनों का उचित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूक बनाती है। इस प्रकार श्रोता साथियों साक्षरता केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है बल्कि बेहतर और टिकाऊ समाज के निर्माण की नींव भी है।
0: जी हाँ मनीषा, साक्षरता की असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने किताब पढ़ी या कितने लोगों ने परीक्षा पास की।
1: बिल्कुल,
0: असली सफलता तब दिखाई देती है जब सीखने की क्षमता व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी बनने लगे। जब कोई व्यक्ति अपने सामने मौजूद जानकारी को समझकर उसके आधार पर निर्णय ले सके, उसकी बात स्पष्ट रूप से रख सके और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह दूसरों पर निर्भर न रहे, तभी शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होता है। हमारे समुदाय में हर व्यक्ति के पास अलग अलग अनुभव और ज्ञान है। किसी के पास खेती का अनुभव है तो किसी के पास पशुपालन की समझ है, कोई पारंपरिक ज्ञान जानता है तो कोई नई तकनीक से परिचित है। यदि इन सभी अनुभवों को सीखने और साझा करने का अवसर मिले तो समुदाय की सामूहिक समझ और मजबूत हो सकती है। साक्षरता हमें यह भी सिखाती है श्रोता साथियों कि जानकारी मिलने और सही जानकारी समझने में अंतर होता है। आज हमारे आसपास सूचनाओं की कमी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हम सूचना को सोच समझकर स्वीकार करें। किसी भी खबर, संदेश या दावे को तुरंत सच मानने के बजाय उसके स्रोत और विश्वसनीयता को देखकर एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान दें। इस तरह बच्चों की शिक्षा को भी केवल स्कूल की जिम्मेदारी मानना सही नहीं होगा। बच्चे घर, परिवार, समाज और अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि घर में सवाल पूछने, किताब पढ़ने, बातचीत करने और नई चीजें जानने का वातावरण हो तो सीखना बच्चों के लिए बोझ नहीं बल्कि मनीषा स्वाभाविक प्रक्रिया बन सकता है। हमें उन लोगों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए जो किसी कारण से पढ़ाई से दूर रह गए हैं। उन्हें पीछे छूटा हुआ समझने के बजाय आगे बढ़ने का अवसर देना जरूरी है। किसी को पढ़ना सिखाने में गलत लगने वाला थोड़ा सा समय उसके जीवन में लंबे समय तक काम आ सकता है।
1: जी हाँ,
0: जरूरत ऐसे समाज की है श्रोता साथियों जहाँ सीखना केवल स्कूल की चार दीवारी तक सीमित न हो, खेत में लिखना हो, खेत में सीखना हो, घर में सीखना हो, काम करते हुए सीखना हो, रेडियो से सीखना हो, पुस्तक से सीखना हो या तकनीक के माध्यम से, हर सीख को महत्व मिलना चाहिए। सामुदायिक रेडियो भी इसे सोच को मजबूत करता है। जब किसी गांव की भाषा में गांव की परिस्थितियों से जुड़े उदाहरण के साथ उपयोगी जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो वह जानकारी अधिक सहज और प्रभावी बन सकती है। रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सीखने और संवाद का माध्यम भी है। इसलिए आज का दिन हमें इस कार्यक्रम का एक अभियान तक सीमित रखने का संदेश नहीं देता, यह हमें अपने जीवन में सीखने की आदत बनाए रखने और दूसरों के सीखने के रास्ते को आसान बनाने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

भाई ने बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो फरमाइशों का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है, आपको SMS करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारी आई है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं सौदागर तू सौदा कर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको, इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं वंदना मराठा, रेखा, पूजा रघुवंशी, चंदा युवराज, वानखेड़े, ललिता, जगदीश चौहान, ललित लक्ष्मी नारायण भाव खड़से, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान, और भी दोस्त कोपर गांव से जुड़ रहे हैं सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, शेव गांव से श्रीराम गोंदली, अशा गोंदली जी। आसाम से जुड़ना चाह रहे हितेंद्र दास जी। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सौदागर तू सौदा कर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

मछली। श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जगमोहन सिंह प्रजापत जी, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, दिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधनूतन, रामनाथ कश्यप जी, ये फरमाइश करता है जो जुड़ रहे हैं बागपत से। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है सुनाया जाए सिर्फ तुम फिल्म का गीत एक मुलाकात जरूरी है सनम। फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, ओम मलिक, आकांक्षा मलिक। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो अनुरोध करता है इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी आप सभी को, रतलाम एमपी से जुड़ रहे जगदीश धाकड़ नायमा, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी इसी बीच जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। दुर्गा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनोहरण वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों बोरखेड़ा पितरामल से। फिल्म का नाम है दिल जले गीत की बोली है हो नहीं सकता। फरमाइश करता है इस गीत से जुड़ना चाह रहे हैं विनोद मुणत, निहान जी, दीपक मयंक मुणत, चित्र नाटा दीक्षा कुश मुणत, दिलीप सिंह पंवार जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल भाटिया, सोनू भापिया भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। इसी बीच खंडवा से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफार डावर, खुश हसीब, अब्दुल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर जी, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से, शबीर परवाना, साइद अली दी, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता जाधव, दादीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा जी, बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोकेलाल वर्मा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं नहीं ये हो नहीं सकता। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत नवाशहर पंजाब से आया है साथियों। फिल्म का नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगी, दुश्मन। गीत के बोल हैं, आवाज दो हमको। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं गगनदीप थाटी, तिरुना कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका जी और वाणी थांडी जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं जफराबाद से, सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताय राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और समस्त जाधव और देशमुख परिवार सदस्यगण। येतला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गश्री जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं मेरठ से, अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। जाखोद राजस्थान से हैं शंभूदाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक,

ସାରନପୁର ସେ ଜୋନ୍ ଟିକେଶ୍ ରୋଜି ଟିକେଶ୍ ଟୋ ପଲ୍ଲୀ ଟିକେଶ୍ ଟୋ ଭିଲେଜ୍ ଟିକେଶ୍ ରୋଜି। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी जी। लोहारा छत्तीसगढ़ से हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आवाज़ दो हमको। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों कुंभार गली कौल गांव से। फिल्म का नाम है दिलवाले। गीत के बोल हैं, जीता था जिसके लिए मरता था। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, अभिसार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी। लोर में चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा ऋषभ मरावी और पुष्पराज मरावी जी। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे ताज बुदंसारी, गुलाम शाबी रही, मेहराज जहां। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जीता था जिसके लिए मरता था। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आए हैं श्रोता साथियों खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडू कौल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, भाविका सिक्का जी, और भी हमारे श्रोता साथी पोटिया कला दुर्ग से हैं। जुड़ना चाह रहे संजय कुमार साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी साथियों, दिल्ली से जुड़ना चाह रहे रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंद्रकोर था छाबड़ा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश हमारे बीच चाहिए मगर रोड छत्तीसगढ़ से। साथियों, फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूँगी, इश्क गीत के बोल हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं ये। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं, दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, करेली बरेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नारायण हुसैन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी, अमरावती महाराष्ट्र, श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण, बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्दबासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आयुश्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर सी। फिल्म का नाम है एतबार। गीत की बोल है, किसी की नजर को तेरा इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है आशा जी ने और भूपेंद्र जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनुजी खान। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है एतबार। गीत के बोल हैं, किसी की नजर को तेरा इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है आशा जी ने और भूपेंद्र जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत के बोल ही क्या मौसम आया है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, प्रियल दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी।

आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है लूटमार। गीत के बोल ही जब आए मेरा जादू। इस गीत को आवाज दी है आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रद्धा साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, रंजन शाहू और छन्नूला श्रीवास। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से समेत मशरूम, साइना हसन, अक्सानाजिया, अधीप आजिया जी, इब्राहिम सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी जब चाहे मेरा जादू। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंजाब से। फिल्म का नाम है नीलकमल, गीत के बोल हैं तुमको पुकारे मेरा प्यार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, यवतमाल से राहुल, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी जी। इस गीत के अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी जी। इस गीत के अनुरोध करता है रामहरि लोखंडी, मंजू लोखंडी, सुरेश लोखंडी, सुर श्रमित रोखंडी और जुड़ रहे हैं ये करजी सिंह। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से सुभाष गोधरा, बिमला गोधरा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोधरा। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भेंडी, श्रीमती मंगला जी भेंडी, विभजी, शुभम, पवन जरिए और सजीव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, फरमाइश के इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, यूपी से सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पूजा पिंकी चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी जी चौरासिया, पवन घोड़े और योगेंद्र नायक जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख और प्रणाली जी देशमुख। इस गीत के अनुरोध करता है डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, साधुनंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश ढाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से हीरामणि शेंडी और सिद्धार्थ जी शेंडी। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन जी शेंडे। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत की बोल ही वो हरे दुपट्टे वाली। इस गीत को आवाज दी है

0: किशोर कुमार जी ने इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयु श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयु श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमो और मानस सिंह राज। इसी बीच जुड़ना चाह रही है खड़वा मध्य प्रदेश से बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिकराजी डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रही है शेख शहीद रही असम भाई। इसी बीच जुड़ना चाह रहे घंसुद्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। बिहार से जुड़ना चाह रही है मीरा सिंह, ज्योति जी। रोहतास से जुड़ना चाह रहे हैं सोनम सिंह और अनामिका जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोले हुआ हरे दुपट्टे वाली। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: गुले गुले।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है रंग गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोईनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, खडवा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफार डावर जी, जगदलपुर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम जी नायडू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभीर चौरासिया, कानपुर से जुड़ना चाह रहे श्रीमती सुजाता चौरासिया और पंकज चौरासिया, पीहू और दियाजी चौरासिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अनिल अमर, दिलीप वर्मा, राजू, रंजत, सजीव वर्मा आकोट से जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है रंग गीत के बोल ही, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM

का पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले मन का कहे की पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वागर रेडियो।

0: वह ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री देख सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने कौशल को विकसित वे कर सकते हैं और जरूरी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना भी वे सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों में सावधानी भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर सच नहीं होती। किसी भी लिंक पर क्लिक करने, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले आपको सोच विचार करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल दुनिया में जागरूकता भी जरूरी है, साथ ही साक्षरता भी इसका एक हिस्सा है। जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसों की सही समझ भी बहुत जरूरी है। युवाओं को ये समझना होगा कि कमाई के साथ साथ बचत, बजट और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार का भी बहुत महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: अपनी आय और खर्च का हिसाब रखना, बैंकिंग सेवाओं को समझना और ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी रखना, ये सभी बातें युवाओं को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल श्रोताओं कमाना नहीं है बल्कि कमाए हुए संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना भी है।
0: जी हाँ दोस्तों, कहना चाहेंगे कि समाज में बदलाव हमेशा बड़े मंचों से शुरू नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: कई बार जागृति जी, बड़ा बदलाव घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू होता है। जब घर का एक युवा जागरूक होता है तो वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी जागरूक कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, परिवार के सदस्यों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं की जानकारी दे सकता है, साथ ही बुजुर्गों के डिजिटल कामों में मदद भी कर सकता है, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा का महत्व समझा सकता है। जागृति जी, इस तरह कहा जा सकता है कि युवा की जागरूकता धीरे धीरे पूरे परिवार और फिर समुदाय तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए साक्षर

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पोषण माह चल रहा है और अभी के समय में हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें जो है वो इसी विषय से जुड़ी हुई करते हैं, और आज हम विश्व साक्षरता दिवस भी मना रहे हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पढ़ाई और पोषण के गहरे रिश्ते को लेकर। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, उनकी याददाश्त तेज हो, वे मन लगाकर पढ़ें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की किताबों में मन लगाने की क्षमता का रिश्ता उनकी थाली से जुड़ा हुआ है? जी हाँ साथियों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और मस्तिष्क विकसित होता है। अगर बच्चों को सही समय पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, वो सुबह बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं, या उनका भोजन केवल पेट भरने तक सीमित रहता है, तो इसका असर उनकी ऊर्जा, एकाग्रता और उनके सीखने की क्षमता पर पड़ता है। तो आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है विश्व साक्षरता विशेष कार्यक्रम में, हम बात करेंगे पढ़ाई और पोषण के गहरे रिश्ते पर। तो आइए जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा दिया था, अब सबसे पहले हम कार्यक्रम के माध्यम से एक रेडियो संवाद से जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई और पोषण का रिश्ता है। और ये जो संवाद है वो शायद घरों और गांवों में एक आम कहानी हो सकती है, लेकिन इससे हम क्या सीख ले सकते हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारा रेडियो नाटक सीमा, जो कि माँ है, पूजा जो उनकी बेटी है, जो स्कूल जाने वाली बच्ची है। तो आइए सुनते हैं।
1: पूजा बेटा, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी।
2: मम्मी, बस 5 मिनट और सोने दो ना।
1: अरे बेटा, 5 मिनट करते करते स्कूल का समय हो जाएगा, चलो जल्दी उठो।
2: अच्छा मम्मी, उठ रही हूँ।
1: लो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ।
2: मम्मी, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी।
1: क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी?
2: नहीं मम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस स्कूल के लिए देर हो रही है। वैसे भी मुझे सुबह भूख नहीं लगती।
1: ओ, लेकिन बेटा बिना कुछ खाए स्कूल जाना ठीक नहीं है।
2: अरे मम्मी, एक दिन नाश्ता नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा, स्कूल से आकर खा लूंगी।
1: अरे बात एक दिन की नहीं है, तुम अक्सर बिना ठीक से नाश्ता किए स्कूल चली जाती हो।
2: लेकिन मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है, खाना खाने से पढ़ाई का क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है बेटा।
2: सच में?
1: हाँ, सोचो अगर तुम्हारे शरीर को समय पर ताकत ही नहीं मिलेगी तो तुम दिन भर कैसे सक्रिय रहोगी?
2: लेकिन मम्मी, मैं तो स्कूल में बैठकर पढ़ती हूँ, कोई भारी काम तो नहीं करती?
1: अरे पूजा, पढ़ाई केवल हाथ पैर का काम नहीं है, पढ़ाई के लिए दिमाग को भी सक्रिय करना पड़ता है। जब शरीर थका हुआ महसूस करता है या पेट खाली होता है तो ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
2: शायद इसीलिए मुझे क्लास में कभी कभी बहुत थकान लगती है।
1: और तुम कल क्या कह रही थी, याद है?
2: क्या मम्मी?
1: तुम कह रही थी बेटा कि मैडम ने जो पढ़ाया था वह तुम्हें ठीक से याद ही नहीं रहा।
2: हाँ मम्मी, मैं पढ़ती तो हूँ, लेकिन कई बार ध्यान ही नहीं लगता, कभी नींद आने लगती है तो कभी थकान।
1: हाँ बेटा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ सही दिनचर्या और पौष्टिक भोजन भी जरूरी होता है।
2: अच्छा मम्मी, तो मुझे रोज सुबह क्या खाना चाहिए?
1: तुम्हें घर में जैसे कि जो पौष्टिक और उपलब्ध खाना हो वह तुम्हें खाना चाहिए, जैसे कि दूध, फल, दाल से बनी चीजें, अंकुरित अनाज, पोहा, दलिया, उपमा, या फिर घर पर बना कोई अन्य पौष्टिक नाश्ता तुम कर सकती हो।
2: और अगर मैं सिर्फ चिप्स और बिस्किट खा लूं तो?
1: बेटा, केवल पेट भरना ही जरूरी नहीं है, शरीर को सही पोषण मिलना भी बहुत जरूरी होता है।
2: अच्छा, तो पढ़ाई के लिए मेरी किताबों के साथ थाली भी जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल जरूरी है, और तुमने सही कहा।
2: मम्मी, हमारे स्कूल में मिड डे मील मिलता है, वो भी हमारे पोषण के लिए जरूरी होता है ना?
1: हाँ बेटा, स्कूल में मिलने वाला पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसे भी ध्यान से और पूरा खाना हमें चाहिए।
2: लेकिन मम्मी, मेरी कुछ सहेलियां तो उसे खाना छोड़ देती हैं, वे कहती हैं कि घर जाकर खा लेंगे।
1: अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करना भी जरूरी होता है बेटा।
2: मम्मी, क्या इसीलिए आप हमेशा कहती हैं कि पढ़ाई के साथ खेलने, खाने और सोने का समय भी तय होना चाहिए?
1: हाँ बेटा, अगर बच्चा समय पर खाना खाए, पर्याप्त आराम करे, खेले और नियमित पढ़ाई करे तो उसकी दिनचर्या संतुलित रहती है।
2: अच्छा मम्मी, कभी कभी मैं मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खाती हूँ और पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती।
1: हाँ बेटा, यही तो समस्या है, खाने के समय भोजन पर ध्यान देना हमें चाहिए और पढ़ाई के समय पढ़ाई पर।
2: अब मैं समझ गई। अच्छा, पढ़ने के लिए केवल ज्यादा देर तक किताबें लेकर बैठना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन भी उतने ही जरूरी होते हैं।
2: मम्मी, आज मैं सुबह बिना नाश्ता किए स्कूल नहीं जाऊंगी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है,
2: और स्कूल में मिलने वाला पौष्टिक भोजन ही, वो भी मैं ठीक से खाऊंगी।
1: हाँ शाबाश बेटा।
2: लेकिन मम्मी, एक बात बताऊं?
1: हाँ बेटा बताओ।
2: आज मुझे समझ में आ गया कि अगर शरीर को सही पोषण मिलेगा तो पढ़ाई में मन लगाने की ताकत भी मिलेगी।
1: बिल्कुल बेटा, और यही बात हर बच्चे और हर माता पिता को समझनी चाहिए।
2: तो चलो मम्मी, आज नाश्ता करते हैं, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
1: हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी करते हैं।
3: पौष्टिक खाना अपनाएं, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें। तन होगा जब मजबूत हमारा, उज्जवल होगा भविष्य हमारा।
0: तो साथियों, आपने सुना हमारी सीमा और पूजा की छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है कि बच्चों की पढ़ाई और उनके पोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। कई बार हम बच्चों के कम नंबर आने पर केवल उनकी पढ़ाई को जिम्मेदार मान लेते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, उसकी याददाश्त कमजोर है। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि बच्चा समय पर और संतुलित भोजन कर रहा है या नहीं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विषय विशेषज्ञ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
4: सभी को नमस्ते, मैं विजय प्रकाश जैन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहंदिया डिंडोर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और हम देख रहे हैं कि पोषण माह चल रहा है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है पोषण और बच्चे की पढ़ाई, स्वस्थ शरीर तेज दिमाग के लिए कैसे जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि क्या बच्चों के पोषण का सीधा असर उनकी पढ़ाई, सीखने की क्षमता और स्कूल के प्रदर्शन पर पड़ता है?
4: जी बिल्कुल, बच्चों की जो पोषण है उसका बच्चों की सीखने की क्षमता पर सीधा सीधा असर पड़ता है। बहुत सारे शोध ये कहते हैं कि जो बच्चे की सीखने की उम्र होती है वो 9 वर्ष तक बहुत ज्यादा होती है। बच्चा 9 वर्ष तक की उम्र में एक बहुत ज्यादा सीखता है।
0: बिल्कुल।
4: और इस उम्र में ही ध्यान देने और सीखने में जो ऊर्जा के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसमें संतुलित भोजन की एक बहुत जरूरी मात्रा होना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
4: तो कक्षा की गतिविधियों में यदि बच्चा बेहतर भाग ले पाए, इसके लिए बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से भूख और कमजोरी की अवस्था वाले जो बच्चे हैं उनका ध्यान सीखने से हट जाता है और शारीरिक जरूरतों की ओर चला जाता है।
0: बिल्कुल।
4: तो सीधे सीधी बात है कि यदि बच्चा भूखा है, उसमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, विटामिन्स की कमी है, तो उसकी सीखने की क्षमताओं पर असर पड़ेगा निश्चित।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अगर बच्चों को लंबे समय तक पर्याप्त और संतुलित पोषण न मिले तो क्या उनकी याददाश्त और समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है?
4: देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। यदि लंबे समय तक उनको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा या बच्चे भूखे रहेंगे लंबे समय तक, तो उनकी सीखने की क्षमताएं प्रभावित होंगी। स्पेशली जो किशोरावस्था होती है, बचपन से लेकर किशोरावस्था की अवस्था, वहां पर जो बच्चों की संतुलित भोजन है उनकी कमजोर याददाश्त का कारण बन जाती है।
0: बिल्कुल।
4: लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल यही चीज नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर्याप्त नींद लेना है, खेल है, सामाजिक सुरक्षा की उनकी जो भावना है, जो उनका सामाजिक परिवेश का ताना बाना है, वो भी उसके सीखने में उतने ही जरूरी है जितना पोषण भी जरूरी।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि लंबे समय तक पर्याप्त संतुलित भोजन अगर बच्चों को न मिले तो उसकी जो विकास की क्षमता है उस पर उसका असर अवश्य पड़ता है। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, नाश्ते में किन चीजों को उन्हें शामिल करना चाहिए?
4: बच्चों की दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो संतुलित नाश्ता लेकर के बच्चे विद्यालय से जाएं। वैसे राजस्थान के विद्यालयों में मिड डे मील मिलता है, लेकिन वो मिड डे मील स्कूल आने के 2 से 3 घंटे बाद मिलता है।
0: बिल्कुल।
4: अभी पिछले कुछ समय से दूध भी बच्चों को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि संतुलित नाश्ता बच्चों को दिया जाए, जैसे दही है, उपमा है, मूंगफली है, भुने चना है, कुछ फल है, दलिया है, दूध है, इस तरह की चीजें दी जाएं, तो बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ता है। नाश्ता होना चाहिए वो विविधतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन उसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। मेरा कहना यह है कि वर्तमान में जो पैकेट बंद नाश्ता जो चल रहा है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं, खाली पेट स्कूल चले जाते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है?
4: बिल्कुल होती है। हम हमारे स्कूलों में देखते हैं कि जो बच्चे भूखे आते हैं, जिनके घर पे किन्हीं कारण सुबह नाश्ता या खाना नहीं बन पाता है, वो लंच का इंतजार करते रहते हैं, मिड डे मील के भोजन का इंतजार करते हैं, और वो बार बार हमसे पूछते हैं सर लंच कब होगी, सर खाना कब मिलेगा। तो उनकी एकाग्रता निश्चित रूप से प्रभावित होती है, उनकी पढ़ाई निश्चित रूप से प्रभावित होती है, और पढ़ाई जो सीखने की क्षमता है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है उनकी।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि स्कूलों में मिलने वाला जो मिड डे मील होता है वो बच्चों के पोषण और उनकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका क्या महत्व है?
4: देखिए, एक तो सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जो विद्यालय में भोजन मिलता है उससे उनकी जो सीखने की क्षमता है वो ठीक रहती है, क्योंकि बच्चे एक लंबे समय तक भूखे नहीं रहते हैं। दूसरा, बच्चों की नियमितता बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
4: बच्चे रोजाना विद्यालय आने लगते हैं, बच्चों का ठहराव बढ़ता है। जिस दिन विद्यालय में यदि भोजन नहीं मिलता है तो बच्चे लंच के बाद भाग जाते हैं स्कूल से।
0: बिल्कुल,
4: तो इनका एक ठहराव बढ़ता है। एक साथ में खाने की संस्कृति विकसित होती है। विद्यालय केवल मिड डे मील में भोजन ही उपलब्ध नहीं करवाता है, हाथ धो के किस तरह खाना है, कैसे अपनी थाली खुद साफ करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे पंक्तिबद्ध होकर के खाना है, खाना खाने के बाद कैसे हाथों को धोना है, तो वो सारी चीजें जो भोजन है, स्वच्छता है, और इसमें जो स्वास्थ्य के प्रति वो सारी समझ विकसित होती है, वो मिड डे मील के माध्यम से होती है।
0: बिल्कुल सर, अब यही मेरा आपसे अगला सवाल है कि पढ़ाई के बीच अगर बच्चों को भूख लगे तो कौन से पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं?
4: लंच के अलावा यदि भूख लगती है तो मूंगफली दी जा सकती है बच्चों को, दूध अभी हम लोगों ने शुरू किया है वो दिया जा सकता है, कुछ चने वगैरह है इस तरह की चीज दी जा सकती है। कुछ साल पहले सरकार ने चिक्की शुरू की थी, चिक्की एक बहुत अच्छा कारण थी, जब हमें बच्चों को भूख लगती थी तो हम बच्चों को बीच में चिक्की, छोटे बच्चों को स्पेशली पहली दूसरी तीसरी वालों को हम चिक्की खिला दिया करते थे, तो उससे बच्चे क्लास में निरंतर रूप से बैठते थे और उनका जो पढ़ाई वाला हिस्सा है वो प्रभावित होता नहीं था।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अगर पढ़ाई के बीच में भी अगर बच्चों को भूख लगे तो कौन से ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं? यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई में मन लगाने के लिए भोजन के अलावा किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है?
4: भोजन के अलावा एक तो पर्याप्त नींद बच्चों को मिलनी चाहिए। अभी मोबाइल के टाइम में हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों का, और इससे बच्चे उतना नहीं सो पा रहे हैं जितना एक पर्याप्त नींद बच्चों को होनी चाहिए। पौष्टिक भोजन और नियमित मिलना चाहिए। पानी बच्चे पर्याप्त मात्रा में पिए, वो स्वच्छ पानी होना चाहिए। एक खेल बच्चे पर्याप्त जो उनकी शारीरिक गतिविधि है वो हो। व्यायाम प्रतिदिन बच्चे मिले। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे विराम होने चाहिए बच्चों के।
0: बिल्कुल,
4: क्योंकि एक चीज मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि जैसे ही बच्चे का हिंदी का और गणित के घंटा चेंज होता है और बच्चे जैसे हिंदी से गणित के बीच में आते हैं तो उनकी हिंदी से गणित में जो टर्नओवर होता है वो बहुत प्रभावित करता है उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो वहाँ छोटी छोटी कुछ विराम चिन्ह होने चाहिए। कला के और खेल के पीरियड्स बच्चों के होने चाहिए। पढ़ने की संस्कृति के लिए स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें बच्चों के साथ होनी चाहिए। दंड जो है स्कूल में हम बंद कर चुके हैं, बच्चों को अपमानित करने वाला जो चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए। और एक स्वच्छ वातावरण, शांत वातावरण, सुरक्षित, स्पेशली जो हमारी छोटी बच्चियां हैं उनको सुरक्षित वातावरण विद्यालय में भी मिलना चाहिए और घरों पर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पोषण के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनका विशेष तौर पर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। यहीं अब मैं जानना चाहूंगी कि माता पिता को बच्चों के भोजन, नाश्ते और रोजमर्रा की आदतों में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है?
4: तो वो ये ध्यान रखें कि पौष्टिक भोजन में क्या खिलाएं बच्चों, क्या विविधतापूर्ण नाश्ता उनको दिया जाए जिससे बच्चे बदल, क्योंकि बच्चे एक जैसी चीज खाते खाते बोर हो जाते हैं। हमारे घरों में भी देखते हैं दिक्कतें आती हैं। उनको क्या खाना अच्छा लगता है उस चीजों को देखें। उन्हें कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है, जो हम गुड टच बैड टच की या सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श की बात करते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। और उनको नींद, भोजन, ये सारी चीजें पर्याप्त मिले। मेरा ये कहना है कि सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है, सुरक्षित सामाजिक परिवेश बहुत जरूरी है, और स्वच्छ भोजन बहुत जरूरी है। ढका हुआ खाना, हाथ धोकर के खाना, हाथ धोकर के पानी पीना, ये सारी चीजें बच्चे विद्यालय में भी सीखते हैं और घर पे भी माता पिता इन चीजों की निरंतरता बनाए रखें, ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि आपसे कि बच्चों के बेहतर पोषण के लिए स्कूल और परिवार मिलकर क्या भूमिका निभाएं और किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए बहुत जरूरी है।
4: देखिए मैडम, परिवार जो है वो बच्चों को स्वस्थ भोजन, नियमित दिनचर्या, भावनात्मक सुरक्षा, ये सारी चीजें सीखने के अवसर देता है। विद्यालय में सुरक्षित वातावरण मिलता है और एक समावेशी वातावरण मिलता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, विद्यालयी भोजन, खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सारी जो आदतें हैं वो सीखने को समर्थन देती हैं। तो यदि ये सारी चीजें होंगी तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकेगा, एकाग्रता के साथ सीख सकेगा और वो सीखना बहुआयामी होगा, विविधतापूर्ण सीखना होगा। तो शिक्षक यदि देखता है कि बच्चा थका हुआ है, भूखा है, आज किसी कारण से उसको कोई दिक्कत है, तो उसको कमजोर विद्यार्थी का दर्जा दे देना उचित नहीं है। उन कारणों की खोज शिक्षक को करनी चाहिए कि बच्चा आज क्यों थका है, क्यों परेशान है, क्यों उदास है, और उन कारणों की खोज करते हुए उन परिस्थितियों को समझे और उसके बाद में वो उस बच्चे को अन्य बच्चों के साथ जोड़े, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए हो सके।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो इस तरीके से स्कूल और परिवार मिलकर बच्चों के बेहतर पोषण और उनकी सुरक्षा को लेकर कार्य कर सकते हैं। यहीं अंत में आप हमारे जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं उनके पोषण और पढ़ाई से संबंधित क्या महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोता साथियों को देना चाहेंगे?
4: हमारे पुराने लोग कह के गए हैं कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, दे दे अपने कंठ की माला। तो बच्चे का पेट, मन और मस्तिष्क तीनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यदि तीनों स्वस्थ हैं, पेट स्वस्थ है, उसका उसमें पर्याप्त भोजन है, मन उसका अच्छा है, मस्तिष्क उसका अच्छा है, तो बच्चा बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बच्चे को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले, पर्याप्त नींद मिले, पर्याप्त रूप से खेलने के अवसर मिले, और क्या वो विद्यालय में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसके साथ महत्वपूर्ण बात है, क्या वो सम्मानित महसूस कर रहा है। यदि वो सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है तो मेरा तो यही सीधा सीधा कहना है कि ये सारी चीजें सीखने का आधार है। सुरक्षित मन सीखने को साहस देता है, अच्छा विद्यालय सीखने के अवसर देता है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें सारे बच्चे सुरक्षित वातावरण में सीख सकें, पर्याप्त भोजन उनको मिले, पर्याप्त नींद मिले, ये सारी चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
4: धन्यवाद।
0: तो साथियों, आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है कि बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों, स्कूल और होमवर्क तक सीमित नहीं है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और सही पोषण का भी उनकी सेहत की प्रक्रिया से गहरा संबंध है। एक बच्चा जब सुबह समय पर पौष्टिक नाश्ता करता है, संतुलित भोजन लेता है और पर्याप्त पानी पीता है और स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है तो उसका शरीर और मन दोनों बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए माता पिता से हमारी छोटी सी अपील है कि बच्चों से केवल यह न पूछे कि आज कितनी पढ़ाई की, कभी यह भी पूछें कि आज तुमने क्या खाया, क्योंकि पौष्टिक भोजन से मिलेगा बल, पढ़ाई में लगेगा बच्चों का मन, स्वस्थ तन और सक्रिय दिमाग, यही है उज्जवल भविष्य की पहचान। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेना चाहूंगी और आशा करूंगी कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई हो।

की। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पकी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावारा हंग्रे किसान भाई बोना ने आपने बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सब नु स्वागत कर रहा हूँ अपने असने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम की किसान भाई बोन आप सब ने खबर हसे कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने अमे हाजिर था एक नवा विषय ने हाथ है तो आज भी एक नव विषय जोड़ाई रो है। आज नो विषय है कि खेती करते दड़े अपने ने हेनी हेनी वातों नु ध्यान राखू है ने अपने हूँ परिश्रम कर हाँ। तो आना विषय में आज अपने बातें तो करंगा पर कार्यक्रम की शुरुआत में अपने हमरे लाग इतने मौरे करा आपड़ी बातें। आप सब हम बरतरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोन अनस की थाते पड़ा सूट आशा करें कि आज जे भी बातें करी कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपने गमी होंगा। आपने हमारो आज नो कार्यक्रम केव लगे एना बारे में आप राय सुझाव आली सको अपने अना पता माते। आपणो पतो है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपणो पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको आपणे अणा फोन नंबर माते। आपणो फोन नंबर है 9460051234। एना साथे आप अपनी प्रतिक्रिया अमारे ईमेल आईडी माते भी मोकली शको। अमारो ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org radio@vagdhara.org। तो किसान भाई बोन फेरी मिलंगा अनस कार्यक्रम में एक नया विषय ने हाथे तारू दी। राम राम राम राम।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है बच्चों की शिक्षा पर निवेश, समाज का उज्जवल भविष्य विषय को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं अंजलि कि आज के बच्चे की शिक्षा पर किया गया निवेश कल पूरे समाज की प्रगति बनकर लौटता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कों या आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि उसकी नई पीढ़ी की सोच, ज्ञान और संस्कारों से तय होता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे केवल परिवार की खुशी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही संस्कार और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, वो समाज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च को केवल खर्च नहीं बल्कि भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश माना जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि आज के बच्चों पर शिक्षा पर किया गया निवेश कल पूरे समाज की प्रगति बनकर लौटता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। शिक्षा बच्चों को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि उसे सही राह और गलत में अंतर करना, प्रश्न पूछना, समस्याओं का समाधान खोजना, निर्णय लेना और जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: एक शिक्षित बच्चा आगे चलकर अपने परिवार को मजबूत करता है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है कि शिक्षा क्यों है सबसे बड़ा निवेश। श्रोता साथियों, जब हम किसी बच्चे की शिक्षा पर पैसा, समय और संसाधन लगाते हैं तो उसका लाभ केवल उस बच्चे तक सीमित नहीं रहता। शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान को परिवार और समाज के साथ साझा करता है, वह बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है।
0: जी हाँ।
1: एक शिक्षित पीढ़ी स्वस्थ, स्वच्छता, पर्यावरण, रोजगार और तकनीक और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इस प्रकार एक बच्चे की शिक्षा का प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: यही बात करें शिक्षा बच्चों के सपने को उड़ान कैसे देती है, तो श्रोता साथियों, हर बच्चे के मन में कुछ बनने और कुछ करने का सपना होता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी या उद्यमी। शिक्षा इन सपनों को दिशा देने का काम करती है। यदि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जागृति जी, उचित मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी क्षमता को पहचान सकता है।
0: जी हाँ।
1: शिक्षा उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ज्ञान के माध्यम से वह आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समाज को केवल पढ़े लिखे लोगों की नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। शिक्षा बच्चों को संविधान, अधिकारों, कर्तव्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ देती है। एक शिक्षित नागरिक अपने आसपास की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान में भागीदारी करता है। वो मतदान के महत्व, कानून के पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझता है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा में निवेश वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने में निवेश है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह अवसरों की कमी से जुड़ी होती है। जब किसी परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके पास बेहतर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देती है, वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है और आने वाली पीढ़ी को भी बेहतर अवसर दे सकती है। इस प्रकार शिक्षा गरीबी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले जो चक्र होते हैं उन्हें तोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
0: जी हाँ।
1: आज हम देखते हैं कि समाज की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक बेटियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले। एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, अधिकारों, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार से जुड़े निर्णय के प्रति अधिक जागरूक हो सकती है।
0: हाँ।
1: वह अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देती है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बेटी स्कूल जाए, सीखे, आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि बेटी की शिक्षा का सम्मान मजबूत परिवार और सशक्त समाज की पहचान है।
0: जी हाँ अंजलि, तो यही हम बात करते हैं शिक्षा के साथ संस्कार भी क्यों जरूरी है। तो साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास भी बहुत जरूरी है। बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, करुणा, मेहनत, पर्यावरण संरक्षण और दूसरों का सम्मान करने जैसे मूल्यों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ज्ञान के साथ संस्कार हो तो वही शिक्षा समाज के लिए वरदान बनती है।
1: जी जी।
0: हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो केवल सफल नहीं बल्कि अच्छी और जिम्मेदार इंसान भी बने।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा पर निवेश, समाज का उज्जवल भविष्य को लेकर, जिसमें हमने जाना कि शिक्षा क्यों है सबसे बड़ा निवेश, इसी के साथ हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे। अब बात आती है डिजिटल शिक्षा की बढ़ती भूमिका की। जी हाँ श्रोता साथियों, आज का समय डिजिटल तकनीक का है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षण सामग्री ने शिक्षा के तरीके को काफी बदल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को तकनीक का सकारात्मक और सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। डिजिटल माध्यमों से बच्चे जो हैं वो दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण वीडियो और डिजिटल पुस्तकालय उनके सीखने के अवसर बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी है कि बच्चों को तकनीक का संतुलित उपयोग सिखाया जाए, डिजिटल साधन ज्ञान का माध्यम बने, ध्यान भटकाने का कारण नहीं।
1: बिल्कुल अंजलि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी का अधिकार है, ये भी बहुत जरूरी है। साथियों, शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना होगा।
0: बिल्कुल,
1: गरीब परिवार, ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों और वंचित समुदायों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के जागरूक नागरिक मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है श्रोताओं, वो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानता है, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है और उसे सही दिशा दिखाता है। कई बार एक शिक्षक का छोटा सा प्रोत्साहन बच्चे के जीवन की दिशा बदल देता है अंजलि। इसीलिए शिक्षा में निवेश का अर्थ अच्छे विद्यालय और संसाधनों के साथ साथ शिक्षकों की क्षमता और सम्मान में निवेश भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं सारी चीजों के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी शामिल होती है। बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, घर भी बच्चों की पहली पाठशाला है।
1: बिल्कुल,
0: अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों पर केवल अच्छे अंक लाने का दबाव डालने के बजाय उनकी रुचि, क्षमता और भावनाओं को समझना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करना, उनकी पढ़ाई में रुचि लेना, उनकी जिज्ञासाओं का सम्मान करना और उन्हें पढ़ने के लिए सकारात्मक वातावरण देना अभिभावकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: हमें बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बच्चे की शिक्षा में पूरा समाज योगदान दे सकता है। समाज के सक्षम लोग जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: पुस्तकें, शिक्षण सामग्री, छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही जागृति जी, गांवों और समुदायों में पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और डिजिटल शिक्षा केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। इससे बच्चे को सीखने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना केवल उसकी उम्मीद करना नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव मजबूत करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ शिक्षित बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। वे साफ पानी, हाथ धोने, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझते हैं। अगर बचपन से ही स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित की जाए तो उनका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए शिक्षा स्वस्थ समाज के निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता है। बच्चों को बचपन से ही पेड़ पौधे, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। शिक्षित और जागरूक बच्चे अपने परिवार को भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बना सकते हैं। एक छोटा बच्चा अगर अपने घर में पानी बचाने या कचरा अलग अलग रखने की आदत शुरू करता है तो पूरे परिवार में बदलाव ला सकता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। आज केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं अंजलि, संचार कौशल, तकनीकी ज्ञान, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और टीम वर्क जैसे कौशल भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें भविष्य की बदलती दुनिया के लिए तैयार करे। उन्हें केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि अवसर पहचानने और नए अवसर पैदा करने वाला बनाने की दिशा में शिक्षित किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत भी विकसित करें। वास्तविक शिक्षा वही है जिसमें बच्चा प्रश्न पूछने से डरे नहीं, उसकी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, कैसे, क्या होगा यदि, जैसे प्रश्न बच्चों की सोच को विकसित करते हैं। प्रश्न पूछने वाला बच्चा चीजों को गहराई से समझता है और नई संभावनाएं खोज सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, विद्यालय और परिवार दोनों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ बच्चे बिना डर के अपनी बात रख सके।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ शिक्षा में समान अवसर हो, यानी कि श्रोता साथियों, समाज में प्रत्येक बच्चे की परिस्थितियां समान नहीं होती है। किसी बच्चे को घर में पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिलता है तो किसी बच्चे को आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जागृति जी समाज की जिम्मेदारी है कि वह अवसरों की असमानता को कम किया जाए। किसी बच्चे की प्रतिभा केवल इसलिए पीछे नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। प्रतिभा किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होती, अवसर मिलने पर हर बच्चा आगे बढ़ सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज हम बच्चों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा और वातावरण तैयार करेंगे कल का समाज उसी का परिणाम होगा। अगर हम बच्चों को ज्ञान कौशल संस्कार संवेदनशीलता और जिम्मेदारी देंगे तो भविष्य का समाज और अधिक मजबूत शांतिपूर्ण और प्रगतिशील होगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम बच्चों की शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे तो इसका प्रभाव केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर समाज और राष्ट्र के विकास पर भी पड़ेगा। इसलिए आज आवश्यकता है श्रोताओं कि हम शिक्षा को परिवार की प्राथमिकता, समाज की जिम्मेदारी और राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला माने।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों की शिक्षा पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन का निवेश समय के साथ कम और अधिक हो सकता है, लेकिन शिक्षा का निवेश व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्तित्व और क्षमता को लगातार बढ़ाता है।
1: बिल्कुल।
0: एक शिक्षित बच्चा अपने जीवन को बेहतर बनाता है, अपने परिवार को मजबूत करता है, समाज को जागरूक करता है और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। इसलिए हर परिवार को, समाज को यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
1: जी हाँ।
0: हमें बच्चों को केवल किताबें नहीं अवसर देने हैं, केवल अंक नहीं ज्ञान देना है, केवल नौकरी नहीं कौशल देना है, केवल सफलता नहीं संस्कार देना है। आज यदि हम बच्चों की शिक्षा में ईमानदारी से निवेश करेंगे तो आने वाला कल ज्ञान, समानता, आत्मनिर्भरता और विकास से भरा होगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं, भविष्य का निर्माण है। हर बच्चे के हाथ में किताब है तो देश के हाथ में विकास है। आज पढ़ेगा हर बच्चा तभी आगे बढ़ेगा भारत।
1: जी हाँ अंजलि, तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारी आज की बातचीत को हम विराम देते हैं क्योंकि समय का मान रखना होगा और समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
0: बिल्कुल।
1: जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है स्वास्थ्य साक्षरता, बीमारी के बारे में सही जानकारी होना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हम पढ़ाई लिखाई को अक्सर केवल किताबों, स्कूलों और परीक्षाओं से जोड़कर देखते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी होना भी एक प्रकार की साक्षरता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि बीमारी के लक्षण क्या हैं, बीमारी से बचाव कैसे करना है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवा कैसे लेनी चाहिए और किस जानकारी पर विश्वास करना चाहिए,
0: जी हाँ।
1: तो हम कह सकते हैं मनीषा कि वह व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और स्वास्थ्य साक्षर है। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हर जगह उपलब्ध है।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और लोगों की बातचीत के माध्यम से हमें रोजाना स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक बातें सुनने को मिलती है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार अधूरी या गलत जानकारी बीमारी को और गंभीर बना सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है, बीमारी के बारे में सही जानकारी क्यों जरूरी है और हम अपने परिवार और समाज को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभा

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य साक्षरता, बीमारी के बारे में सही जानकारी होना।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यही अगर बात करें कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य साक्षरता का सरल अर्थ है स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी को समझना और जरूरत पड़ने पर उसका सही उपयोग करना।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो केवल इतना काफी नहीं है कि उसे बुखार है, उसे यह समझना

0: है ये कि बुखार कई कारणों से हो सकता है। हर बुखार श्रोता साथियों एक ही दवा लेने से सही नहीं होता है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी हो रही है, सांस लेने में परेशानी है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है या शरीर में कोई दूसरा असामान्य बदलाव दिखाई दे रहा है, तो श्रोता साथियों उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य साक्षरता हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी जानकारी भरोसेमंद है और कौन सी अफवाहें हो सकती हैं और कब स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर से सलाह हमें लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि स्वास्थ्य साक्षरता क्या है। तो श्रोता साथियों, स्वास्थ्य साक्षरता का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समझ सके, उसका सही उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए बीमारी की शुरुआती लक्षणों को पहचानना या जानना कि कब घरेलू देखभाल पर्याप्त है और कब डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को सही तरीके से लेना, टीकाकरण और नियमित जांच के महत्व को समझना, साफ सफाई और पोषण का ध्यान रखना, अफवाहों और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी में अंतर समझना, बीमारी से बचाव के उपाय अपनाना, ये सभी स्वास्थ्य साक्षरता है। स्वास्थ्य साक्षर जो व्यक्ति होता है मनीषा, केवल वह अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की, परिवार की सेहत के प्रति अधिक सजग रहता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बीमारी की जानकारी कहाँ से ले इसकी, तो श्रद्धा साथियों हम देखते हैं कि आज हमारे पास जानकारी के लिए बहुत सारे साधन हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हर जगह से मिली जानकारी पर भरोसा करना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए श्रद्धा साथियों हम डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र और श्रोता साथियों अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी से सलाह भी हम ले सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट, अस्पताल और सामान्यता प्राप्त श्रोता साथियों स्वास्थ्य संस्थाओं में जाकर भी हम इसकी उपयोगी जानकारी हम ले सकते हैं। अगर श्रोता साथियों मोबाइल पर कोई स्वास्थ्य संबंधित वीडियो या संदेश आता है, तो श्रोता साथियों उसे हमें तुरंत सर्च मानकर आगे भेजने के बजाय यह देखना चाहिए कि जानकारी किसने दी है और इसका भरोसेमंद आधार क्या है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बीमारी के बारे में सही जानकारी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय पर सही जानकारी, सही इलाज, सही सावधानी जीवन की रक्षा कर सकती है। कई बार लोग बीमारी की शुरुआती लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लगातार बुखार रहना, बहुत अधिक कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी, शरीर में असामान्य दर्द और कोई अन्य गंभीर लक्षण। यदि समय पर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह न ली जाए मनीषा, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग किसी भी बीमारी के बारे में सुनते ही डर जाते हैं और बिना सही जानकारी के गलत दवा या गलत इलाज शुरू कर देते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि हर बीमारी का इलाज पड़ोसी, रिश्तेदार या इंटरनेट की सलाह से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और बीमारी की स्थिति भी अलग हो सकती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, हम जान रहे हैं स्वास्थ्य साक्षरता और साथ ही बीमारी को लेकर सही जानकारी होना हमें क्यों जरूरी है। यही बात करें, अफवाहें और गलत जानकारी हो सकती है खतरनाक को लेकर। तो श्रोता साथियों, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। कोई वीडियो, कोई घरेलू नुस्खा या कोई संदेश कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें हर संदेश पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे संदेशों में कहा जाता है कि एक विशेष चीज खाने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर की दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई घरेलू नुस्खा गंभीर बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देगा, टीके नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ बीमारियां छूने या कह सकते हैं कि साथ बैठने से फैलती है, जबकि वास्तविकता अलग हो सकती है। ऐसी गलत जानकारियां लोगों में डर, भ्रम और भेदभाव पैदा कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, किसी भी स्वास्थ्य संबंधित संदेश को आगे भेजने से पहले सोचना जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह जानकारी किसी विश्वसनीय स्वास्थ्य स्रोत से मिली है, क्या डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी भी यही बात कहते हैं, क्या यह जानकारी वैज्ञानिक रूप से सही है। अगर जानकारी पर संदेह हो तो उसे आगे बढ़ाने के बजाय किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से पूछना बेहतर है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब श्रोता साथियों केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। लगातार तनाव, चिंता, डर, उदासी, नींद में परेशानी या रोजमर्रा के कामों में श्रोता साथियों मन न लगना जिसे समस्या है वो भी गंभीर हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लेना भी हमारे लिए मददगार हो सकता है।
0: जी जी।
1: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर श्रोता साथियों शर्म या झिझक हमें नहीं रखनी चाहिए। यही अगर अंजलि जी बात करें कि गाँव में स्वास्थ्य साक्षरता की क्यों जरूरत है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गाँव में स्वास्थ्य साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई बार श्रोता साथियों लोग बीमारी को लेकर अफवाहें या सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। परंपराओं का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों हमें बीमारी का भी ध्यान रखना है और चिकित्सा से भी जरूरी जानकारी हमें लेते रहना है। साथ ही श्रोता साथियों आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल लोगों तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों अगर गाँव का हर परिवार यह समझ जाए कि बीमारी के लक्षण कब गंभीर लेने ही और सही सलाह कहाँ से लेनी ही, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति ही वो जागरूक हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए हमें बीमारी के लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में कई बार बीमारी के संकेत दिखाई देते हैं। शरीर हमें पहले से सावधान करता है, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य साक्षरता हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे, लगातार बढ़ती जाए या गंभीर लगे तो देर नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कई बीमारियों में समय पर पहचान और इलाज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों बीमारी को छिपाने, शर्म करने या डरने के बजाय सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि बीमारी से बचाव इलाज से बेहतर। एक प्रसिद्ध बात है कि इलाज से बेहतर बचाव है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि भोजन से पहले और शौचालय के बाद हाथ साफ करना, साफ और सुरक्षित पानी का प्रयोग करना, घर और आसपास साफ सफाई रखना, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना, पर्याप्त नींद लेना, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाना, बीमारी के लक्षण होने पर उचित सलाह लेना। श्रोता साथियों स्वास्थ्य साक्षरता हमें केवल बीमारी के बाद इलाज करना नहीं सिखाती, बल्कि बीमारी से पहले ही बचाव करना सिखाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सही स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करना केवल सरकार और डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी की जिम्मेदारी है साथियों कि हम सही जानकारी रखें और गलत जानकारी को फैलाने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों अगर किसी परिवार में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे छुपाने के बजाय उचित सलाह हमें देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, उन्हें साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता और बीमारी के समय सही कदम उठाने की जानकारी हमें देनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, शिक्षा और सफलता तभी सार्थक है जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए केवल अस्पताल या दवाइयां ही पर्याप्त नहीं है। हमें सही जानकारी, सही आदत और सही निर्णय की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य साक्षरता हमें ये शक्ति देती है कि हम बीमारी को समझ सके, उसके प्रति सावधान रह सके और समय पर उचित सहायता ले सके। याद रखिए कि गलत जानकारी बीमारी को बढ़ा सकती है, लेकिन सही जानकारी बचाव और सही इलाज का रास्ता दिखा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए किसी भी स्वास्थ्य संबंधित बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें, जानकारी को समझें, जांचें, जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें।
1: जी हाँ।
0: हम सभी इस बात को मान सकते हैं कि हम स्वयं भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनेंगे और परिवार और बच्चे और पूरे समाज तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि सही जानकारी से बढ़ेगी समझ और समझ से होगा सही निर्णय, सही निर्णय से सुरक्षित होगा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समाज से बनेगा मजबूत राष्ट्र।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन करवा दे।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य पर बातें अब यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।